एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: जनता पार्टी CGPA ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CGPA प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CGPA के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। ये वाक्य महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 261। संगीत सरिता, इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला घुंघरू की तरह का भाग 6। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8:00 होंगे समाचार प्रभात और इसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे सुबह 8:15 पर

त्रिवेणी कार्यक्रम में आलेख और स्वर यूनुस खान का प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनेंगे नए गीत सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सुधीर फड़के पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। यही कार्यक्रम पुनः सुना जा सकता है रात 9:30।

दिन में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक कमेंट्स द्वारा कार्यक्रम सुरीला सफर में। दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुनिए दिन में 3 बजे। संवादक नेहा शर्मा, प्रस्तुत करता राघवेंद्र नेगी। दिन में 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए नाटक वो आएगी। लेखन तस्वीर आबिदी, निर्देशन जयदेव शर्मा कमल। दोपहर 4 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। फिल्म निर्देशक, लेखिका और नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2। संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक और इसी बीच आप 6 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसी के बाद 6:30 पर झरोखा में आप सुन सकेंगे शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6:35 पर संध्या रंजन। विशेष जयमाला में आज आप सुनेंगे महावीर चक्र मेजर दलजीत सिंह नारंग को। इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज अकॉर्डियन अरुण पौडवाल को सुनिए। हवा महल कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। झलकी चोर के घर मोर, लेखन दिलीप सिंह, निर्देशन कमल दत्त। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा 8:15 पर। समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए कार्यक्रम ये आप सुन सकेंगे रात 9 बजे। छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे 10:30 पर। ढलती जाए रात। रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 261।

अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायास ही मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं। कोयल कूक रही है। ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

घुंघरू की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है आज इस श्रृंखला की छठवीं और अंतिम।

0: कड़ी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं, हमारा ये खूबसूरत सिलसिला पिछली कई कड़ियों से चल रहा है और साथ में चल रहा है गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन साहब के साथ एक साक्षात्कार, जिसमें हमने उनके विभिन्न आयामों और विभिन्न पहलुओं पर नज़र डाली, कभी संगीतकार के रूप में, कभी गायक के रूप में, कभी गीतकार के रूप में, कभी शोधक के रूप में, कभी चिंतक के रूप में। आज इस कड़ी में जैन साहब का एक नया अध्याय खोलते हैं जो हमें उनके आध्यात्म की ओर ले जाता है। ये आध्यात्म उन्हें कहाँ से मिला, कैसे प्राप्त हुआ और अपने मन से उन्होंने किस प्रकार आध्यात्मिक रचनाओं को सिनेमा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया, इस यात्रा के बारे में दादा से कुछ बात करें। दादा, आपका स्वागत है।
2: आध्यात्म आत्मा का स्वाभाविक गुण है और ये भी मुझे अपने पिताश्री से मिला है। मैंने फिल्मों में और धारावाहिकों में जो कुछ आध्यात्मिक काम किया है, उसकी एक झलक छोटी सी आपकी सेवा में रख रहा हूँ।

0: जैसा आपने कहा कि यह आध्यात्मिक उजास आपको आपके पिताश्री से प्राप्त हुआ, आपके संस्कारों से मिला, इसके साथ साथ क्या कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनकी रचना का प्रभाव आपके मन पटल पर पड़ा हो और जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया हो?
1: वास्तविक बात तो यही है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें हो सकता है शब्द या काफिया रदीफ कुछ अलग हो, लेकिन बात सब उन्हीं लोगों की, वही लोग बोल रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और कोई आध्यात्मिक रचना आपने कुछ जी। पद भी संगीतबद्ध किए हैं और लोगों को एक एक अजीब सा मतलब अजीब वातावरण से हटा के आध्यात्मिक तरफ लाई हैं आपकी रचनाएं, कुछ और कुछ सुनाए दादा।

0: तदा संगीत सरिता के सफर में आपके साथ चलने के साथ मैंने एक बात पाई है कि आपके अंदर जो स्पॉन्टेनियस काव्य रचने की क्षमता है वो बड़े कमाल की है। न जाने कैसी आध्यात्मिक और वैचारिक शक्ति है जिससे आप तुरंत कविता कह देते हैं, काव्य रच देते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे?
1: मैं सिर्फ अपने आप को उस माहौल के हवाले कर देता हूँ और वहाँ से जो कुछ फूट पड़ता है उसे गा देता हूँ।
0: संगीत सरिता का ये संगम, ये सफ़र भी यहाँ परिपूर्ण हो रहा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम चाहते हैं आप श्रोताओं को दो शब्द कहें।
1: पहले तो मैं अपनी भावना रखना चाहूँगा और फिर एक मुखड़ा सुनाऊँगा
0: अवश्य,
1: जो अभी अभी मेरे मन में आया है गाने का। ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे।
0: वाह वाह।
1: ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे। ज्ञान का यदि ज्ञान दे तो उस पे मत अभिमान दे, और यदि अभिमान दे तो औरों का गुणगान दे। शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे।
0: वाह वाह।
1: शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान।

0: दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ आने के लिए और हमारे असंख्य श्रोताओं को लाभान्वित करने के लिए। मैं राजेश चौरी आपसे विदा लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और संध्या मुखर्जी के गाए इस गीत के साथ फिल्म तराना से। प्रेम धवन ने इस गीत को रचा है, अनिल बिस्वास का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनिल बिस्वास का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कवि प्रदीप ने। अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजें हैं। फिल्म का नाम किस्मत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए मुसाफिर फिल्म का ये गीत सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार की, शैलेंद्र की शब्द रचना और धुन बनाई है सलील चौधरी ने। ला ला ला।

आइए अब आपको सुनवाते हैं नौशाद के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया ये गीत, अल्फाज शकील बदायूनी के और फिल्म का नाम शबाब।

0: एक खुशखबरी
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंद सखियों के लिए। सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंद इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11। पहली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022400-2466 और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपने
2: दिल्ली का ठग। इस फिल्म का गीत अब सुनेंगे आशा भोसले जो रवि का संगीत।
3: बिल्ली
4: आ रही थी रे
3: सी ए टी कैट कैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे
4: हे मेड इन मैड मैड माने पागल बॉय बॉय बॉय कहो तो क्या हुआ
3: सी ए टी कैट कैट माने बिल्ली चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ
4: हे मेड बॉय बॉय बॉय माने लड़का। अरे मत बिस्का तुम कहो तो क्या

0: नजर ओ जाने जिगर तेरा
1: जहां से डरो ये सोचा करो हमें क्या कहेगी दुनिया
0: जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया
1: जहां से डरो ये सोचा
0: बैड माने बुरा ब्यूटी बट पंजे में तो क्या हुआ
1: ए मेड मैन

0: रात में आसमान चांद सितारों से भरा, रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत संपन्न करने की दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

FM बैंड के 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इस सुविचार से, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी।

और अब जानकारी लेते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को इतिहास में घटित हुए। 2002 में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रारंभ हुई। 2004 में आज ही के दिन अर्जेंटीना को हराकर फुटबॉल का कोपा बप ब्राज़ील ने जीता। 2005 में आज ही के दिन नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण हुआ। 2008 में आज ही के दिन यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की। और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज ही के दिन जन्मे। प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य कृष्ण पट्टाभी जोइस, इनका जन्म आज ही के दिन 1915 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध कवयित्रियों में से एक विद्यावती कोकिल, इनका जन्म आज ही के दिन 1914 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा गांधीवादी मालती चौधरी का जन्म आज ही के दिन 1904 में हुआ। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज, इनका जन्म आज ही के दिन 1874 में हुआ।

और अब जान लेते हैं उन विभूतियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। 1966 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका निधन हुआ। इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के बाद रुक करते हैं गीत संगीत की ओर, सुनते हैं मुगले आजम फिल्म का ये गाना।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर हंगामा, पुलिस की टी शर्ट पहने एक उपद्रवी गिरफ्तार, छात्र आंदोलन, हंगामा, तोड़फोड़ व पथराव। जी हां, सासाराम में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों का आंदोलन सासाराम में कुछ समय के लिए उग्र हो गया। इस दौरान प्रदर्शन में घुसे कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से रोहतास प्रशासन पर पत्थरबाजी की गई। यह हंगामा दोपहर 12 बजे के बाद सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते धरना प्रदर्शन से तोड़फोड़ और पत्थरबाजी में बदल गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रोहतास डीएम दीपक कुमार मिश्र और रोहतास एसपी रोशन कुमार ने मौके पर पहुंचकर पहले आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया। जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। कोचस में ग्रामीण इलाकों से शनिवार की सुबह 24 बच्चों को लेकर स्कूल लौट रही डीपीएस की बस सड़क से अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। यह घटना महुवारी गांव के समीप की है। बस पलटने के बाद अंदर फंसे 9वीं और 10वीं की छात्रों ने समझदारी दिखाते हुए बस का कांच तोड़ा और आपातकालीन गेट से छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्चों को ढांढस बांधाकर एक जगह एकत्र किया। वहीं बस को नियंत्रित करने की कोशिश के दौरान चालक स्टेबिलिटी बनाए रखने के चक्कर में उसी में दब गया। ग्रामीणों ने उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस हादसे में स्कूल के बच्चों को मामूली चोटें आईं।

सासाराम में शनिवार को बिहार बंद के आह्वान के मद्देनजर सासाराम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। रेलवे प्रशासन और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया था कि पूरे स्टेशन परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। रेलवे सुरक्षा बल RPF, राज्य के रेलवे पुलिस GRP तथा स्थानीय पुलिस के अधिकारी और जवान लगातार गश्त करते रहे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। बिहार राज्य खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना की उत्कर्ष सक्षम और प्रेरणा योजना के अंतर्गत खेल छात्रवृत्ति वितरण के प्रमाण पत्र बांटे गए। रोहतास जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव विनय कृष्ण ने बताया कि जिले में एकमात्र एथलेटिक्स ही ऐसा खेल रहा जिसमें 8 एथलीट इस योजना के हकदार बने हैं। यह जिले के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है।

महुआ में राज्य सरकार के सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर शनिवार को कैमूर जिला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिले के लिच्छवी भवन महुआ में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम ने की, जिसमें वरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद बिहार सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित विशेष टेलीफिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों ने जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी ली। लाइव प्रसारण के बाद डीएम द्वारा जिले के चिन्हित भूमिहीन और पात्र लाभुकों के बीच बंदोबस्त पर्चा का वितरण किया गया।

कैमूर जिले में हिट एंड रन के 208 मामलों में पीड़ित और उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जा चुका है। मोटर व्हीकल एक्ट योजना और आम जन को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दुर्घटना के बाद ऐसे मामलों में फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट दर्ज कर उसे आई रेड ऐप पर अपलोड किया जाता है। इन मामलों को दो विभागों में वर्गीकृत किया जाता है, पहला जिसमें घटना करने वाले वाहनों की पहचान हो जाती है और दूसरा जिसमें वाहनों की पहचान नहीं हो पाती है। पीड़ित या आश्रित से मुआवजा हेतु आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान किया जाता है। महुआ में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और विद्यार्थियों में रचनात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से नगर पंचायत कुदरा की ओर से 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका समापन शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में हुआ। यह आयोजन नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के परियोजना पदाधिकारी सह अपर निदेशक के निर्देश पर किया गया। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और गाना फिल्म कन्यादान से।

और अब जानकारी लेते हैं अखबारों से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेजा, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। हिंदुस्तान लिखता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। प्रधान ने कहा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्यागपत्र दिया है। वहीं दैनिक जागरण के शब्द हैं, प्रधान ने कहा, मेरे लिए निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं, पहले दिन ही नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली। जन भावनाओं को देखते हुए और ग्राउंड रिपोर्ट मिलने के बाद इस्तीफे का हुआ फैसला। प्रधान ने छात्रों के नाम लिखा पत्र, युवा साथी के रूप में किया संबोधित। प्रभात खबर लिखता है, नीट प्रश्न पत्र लीक विवाद को लेकर पिछले 37 दिनों के जारी ऐतिहासिक छात्र आंदोलन शनिवार को आखिरकार समाप्त हो गया। देश भर में हो रहे प्रदर्शन और भारी जन दबाव के बीच

दोपहर करीब 2:30 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम व्यतीत करने वाला है और वे राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को इस स्थिति का फायदा नहीं उठाने देना चाहते। यह खबर जंतर मंतर पहुंचते ही हजारों छात्रों का गुस्सा जीत के जश्न में बदल गया। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार बंद के दौरान कई जिलों में उग्र प्रदर्शन, सीवान में फायरिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग और पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को आईसा समेत अन्य वाम छात्र संगठनों की ओर से आहूत बिहार बंद के दौरान 13 जिलों में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प हुई। ग्राहकों को मिलेगा बिजली वितरण कंपनी चुनने का अधिकार, इस खबर को दैनिक जागरण ने मुख्य पृष्ठ पर जगह देते हुए लिखा है। भारत सरकार लंबे समय से बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े सुधार की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई वजहों से यह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र देश के बिजली वितरण सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा सुधार करने को तैयार है। इसका स्पष्ट संकेत केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में बिजली मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में दिया। इसके तहत हर बिजली वितरण क्षेत्र में एक से ज्यादा कंपनियां बिजली आपूर्ति का काम करेगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से आम बिजली उपभोक्ताओं को एक से ज्यादा वितरण कंपनियों का विकल्प मिलेगा, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। यह सरकार आपकी है, हम आपके सेवक हैं, मुख्यमंत्री के इस कथन को प्रभात खबर ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सरकार बिहार की जनता की सरकार है, हम आपके सेवक हैं। बिहार की जनता ने जो भरोसा जताया है उनके कल्याण और सपने को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। सरकार के 100 दिन पूरे के उपलक्ष्य पर BIT मेसरा पटना परिसर में आयोजित समारोह सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन में कहा कि उनका प्रत्येक निर्णय जनहित, सुशासन और बिहार के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहा है।

और अब एक नज़र आर्थिक एवं खेलकूद जगत से। फिर प्रभावित हो सकती है वैश्विक सप्लाई चेन। अमेरिका, चीन, ईयू के आपसी प्रतिबंधों से खाद, क्रूड गैस व इलेक्ट्रॉनिक्स की आपूर्ति पर असर संभव। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी, चीन और यूरोपीय संघ के बीच आपसी प्रतिबंधों की नई लहर ने अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को नए खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाद, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, एलएनजी और इलेक्ट्रॉनिक समेत कई अहम वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बाजार में पहले से ही कई प्रमुख जिंसों की कीमतों में चढ़ाव साफ दिख रहा है, जो इस अनिश्चितता का सीधा नतीजा माना जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के लाल झंडू ने दिलाया भारत को पहला पदक। नालंदा के झंडू ने पैरा पावर लिफ्टिंग के हेवी वेट वर्ग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा भारत ने 2-0 से सीरीज जीती। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जिम्बाब्वे को 90 रन से करारी शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई। भारत ने पहला मैच 7 विकेट से जीता था और एक मैच शेष रहते सीरीज जीत ली थी। भारत की जीत के नायक

ईशान किशन और तिलक वर्मा रहे। ईशान ने 44 गेंदों पर 81 रन की शानदार पारी खेली। और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 25 से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। और आज के इस अंक में यहीं तक। कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त संगीता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्य

0: कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर, पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू, सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजी फिल्म का गाना।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राजे फिल्म का गाना। पेश है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

आदमी फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, शकील बदायूनी की रचना थी, धुन बनाई थी नौशाद ने। इस गाने को सुनना चाहा था छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, बेगम कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चिराग से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, धुन बनाई है मदन मोहन ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, छत्तीसगढ़ से दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हसरत जयपुरी की रचना थी, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इस गाने को सुनना चाहा था जतुका किशनपुर से आलम दिलकर शबाना नाज, रिजवान राहे इमरान राजा, आलम शेख शबाना आलम और चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से वकील राहे फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिधि गुप्ता और माला मिश्रा। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम पलक और पंखुरी गुप्ता। राजनगर कांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली सूर्यांशी, कोमल मेनका, माधवी साध्वी तन्मय और गुनगुन साक्षी मिश्रा। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है ताजमहल से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रोशन ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं कुवात से शेख जफर हसन और राकेश रोशन, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती।

0: आवाज़ें हैं उदित नारायण और आशा भोसले की, समीर की रचना है, धुन बनाई है जतिन ललित ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर राही, श्रीमती सरिता ग्वाड़कर और प्रिंस एकांश ग्वाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाड़कर, प्रणीता ग्वाड़कर, अर्जुन ग्वाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश ग्वाड़कर, सुमित ग्वाड़कर, कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर। ग्राम कोन जिला रोहतास से सोनामती देवी, अर्चना देवी, प्रभा देवी, कुसुम शारदा, प्रियंका देवी।
1: पता है शेखर,
2: इंसान को तकलीफ
3: कभी कभी उसको

इसी गीत के साथ कार्यक्रम पसंद आपकी को संपन्न करने की दीजिए इजाजत। अपनी रेडियो सखी संगीता को नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।

0: हो रहे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: पशु पालकों एवं कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य है बेहतर नस्ल, अधिक उत्पादन और सुरक्षित भविष्य।
2: अब कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई सेवा केवल पंजीकृत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन एआईटी से ही कराएं। एआई कराने से पहले तकनीशियन का पंजीकरण और पहचान अवश्य देखें। हमेशा प्रमाणित एवं अधिकृत सीमेन का ही उपयोग करें ताकि आपको स्वस्थ बछड़े, बेहतर नस्ल और अधिक दूध उत्पादन का लाभ मिल सके। यदि आप एआई तकनीशियन, सीमेन विक्रेता, सीमेन बैंक या इस सेवा से जुड़े संस्थान हैं, तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक पंजीकरण अवश्य कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा बिहार लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना से संपर्क करें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का मिला प्रभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। प्रदेश में बसेरा दो अभियान के अंतर्गत 5,446 भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा वितरित। और देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री जोशी ने कहा कि वह नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के समाप्त होने के बाद सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। वार्ता के दौरान परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने बताया कि सरकार ने सीजेपी के मांगों पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ पहले से प्राथमिकी दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा और उसकी प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है, नियमों के अनुसार अधिकतम संभव सहायता दी जाएगी। परीक्षा सुधारों को लेकर सीजेपी की ओर से दिए गए 5 सूत्रीय सुझावों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इन पर गंभीरता से विचार करेगी और सीजेपी के साथ चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

0: वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति की शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया गया है। केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था में शिक्षकों को न्यूनतम 70% कक्षाएं लेना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के नए मापदंडों के अनुसार शिक्षण कार्य के मूल्यांकन में 80% या उससे अधिक कक्षाएं लेने पर ए ग्रेड मिलेगा, जबकि 70 से 80% के बीच कक्षाओं में अपनी सेवा देने पर संतोषजनक ग्रेड शिक्षकों को मिलेगा। प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति के लिए संबंधित वर्षों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR में संतोषजनक और अच्छा ग्रेड तथा स्क्रीनिंग सह चयन समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा, राजद और जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में NDA की ओर से कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोड शो करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि उनका रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए उद्योग भवन के पास समाप्त होगा। इधर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं राजद और जन सुराज के प्रत्याशी भी सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सीवान जिले में परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख ब्रजेश मोहन ने बताया कि जिले के दरौली में बनने वाले परमाणु बिजली घर को घाघरा नदी से 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। अभियंता प्रमुख ने बताया कि बिजली घर को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होने पर अलग से NOC लेना होगा। उन्होंने कहा कि जिले में 700 मेगावाट की 2 इकाई का निर्माण किया जाना है। इसके लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पानी देने की मांग की थी। गौरतलब है कि बांका में बनने वाले परमाणु बिजली घर के लिए पहले ही पानी की व्यवस्था कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया था। कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक युवा शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण और मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। प्रदेश में बसेरा 2 अभियान के अंतर्गत 5,446 भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा वितरित किया गया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री

0: डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि 15 अगस्त तक राज्य में 30,000 भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा वितरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों को सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित आवास के संकल्प पर काम कर रही है। इधर अरवल जिले में अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत जिलाधिकारी अमरीशा बैंस ने 40 महादलित और भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा का वितरण किया। कारगिल विजय दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। यह दिन ऑपरेशन विजय की सफल और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अभियान के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में उन क्षेत्रों को वापस हासिल किया था जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना द्वारा शहीद अधिकारी किशोर कुणाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि राज्य के 18 वीर जवानों ने इस युद्ध में अपना बलिदान दिया था। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
1: दिनांक 26 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना के फुलवारी शरीफ में सबसे अधिक 53.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को कल पुलिस ने समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने बिहार बंद को देखते हुए बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की वार्षिक परीक्षा 2 अगस्त को लेने की घोषणा की है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राम कुमार ने बताया कि पहले यह परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी। गृह विभाग ने सिवान जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया सेवाओं पर रोक लगाई है। यह रोक आज शाम 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। कटिहार जिला के बारसोई अंचल के बलतर पंचायत के राजस्व कर्मचारी रविकांत रंजन को जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध लगातार शिकायतें आ रही थीं। पटना जिले के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से साइबर थाने की पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उस पर 43 साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। पटना के मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने हत्या के आरोप में पिता पुत्र को आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शेखपुरा जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव में वरीय अधिवक्ता चंद्रमौली यादव अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। वहीं विनोद कुमार सिंह महासचिव और शकील अहमद कोषाध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, CJP का प्रदर्शन खत्म। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा, CJP का आंदोलन खत्म। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, यह सरकार आपकी।

0: हम आपके सेवक, हर फैसला जनता के हित में। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ सारनाथ। आज अखबार लिखता है, विशिष्ट विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे मुख्यमंत्री। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का मिला प्रभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। प्रदेश में बसेरा दो अभियान के अंतर्गत 5,446 भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा वितरित। और देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार वोट देना तो है, लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
3: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
3: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
4: मतलब जानकारी भी, मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल। 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
3: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
2: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
6: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
7: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
6: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 9:05 हो रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए ये आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से प्रत्येक बुधवार को दिन के 11 बजे फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश और प्रत्येक रविवार को दिन के 11 बजे हेलो फरमाइश का प्रसारण किया जाता है। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग प्रत्येक बुधवार को प्रातः 10 बजे तथा दिन के 1 बजे होता है। रिकॉर्डिंग के लिए आप फोन नंबर नोट कर लें। फोन नंबर है 0612-4541-651। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0612-4541-651। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमालिका। नन्हे मुन्हे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर लेकर हम हाजिर होंगे 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी का समय होगा 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार हम आपको सुनवाएंगे 10:45 पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण एवं संदेश सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समय होगा 10:55 पर और इसका संस्कृत अनुवाद का प्रसारण सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11:30 पर। शाम का स्वागत कीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम से। कार्यक्रम होगा वंदन। समय होगा 5:10 पर। विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत सुनिएगा 6:00 से। समाचार बुलेटिन भोजपुरी समाचार बुलेटिन का समय होगा 6:05 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर लेकर हम हाजिर होंगे 6:10 पर। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे 7:00 से। कार्यक्रम का नाम है ममता का आंचल। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद आपको सुनवाएंगे 7:50 पर। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण सुनिएगा 8:30 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे 9:00 से। गजलों की महफिल सजेगी 9:15 पर।

अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाजीगर फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है आशा भोसले और विनोद राठौड़ ने। जाफर गोरखपुरी की रचना है और धुन बनाई है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम बाजीगर।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया की ना

0: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम, और ये
0: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी
1: हाँ?
2: आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साजन फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ थी अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत फिल्म सड़क से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतमालिका अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती की दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज

सुधीर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासूवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कहिन मधुर तुदसि लागला लंके

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूर

हिंदी में सुधीर फड़के की कुछ गिनी चुनी फिल्में ही हैं। भाभी की चूड़ियां के अलावा उनकी एक फिल्म आई थी गोकुल का चोर।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री प्रह्लाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर

अंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। इस बीच दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। समग्र राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। भारत के युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गई हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जय हिंद बच्चों,
1: जय हिंद दीदी।
0: स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम अंकुर में। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का बहुत सारा प्यार।
0: बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंकुर कार्यक्रम में बहुत सारी बातें होती हैं। आज हमने कार्यक्रम में शामिल किया है कारगिल विजय दिवस पर जानकारी, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर बातें। कार्यक्रम में गीत संगीत तो होंगे ही, साथ ही आप सब बच्चों की मीठी मीठी आवाज में कविता, चुटकुला, गीत वगैरह। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस पर करते हैं थोड़ी बातें। बच्चों, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन यानी 26 जुलाई 1999 में भारत ने कारगिल में पाकिस्तान से युद्ध जीता था। कारगिल भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे और खराब मौसम वाला क्षेत्र है। यही टाइगर नामक पहाड़ी पर युद्ध हुआ था। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है, यहाँ तक कि रात में तापमान -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार कर देश के नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश किया, तो भारतीय फौज ने उनका डटकर मुकाबला किया। भारतीय फौज द्वारा किए गए इस संघर्ष को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया और आखिरकार कुल 2 महीनों के बाद 26 जुलाई 1999 को यह संघर्ष खत्म हुआ, हमारे देश ने विजय हासिल की। तभी से यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के प्रधान

प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। अनेक तरह के देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर हम सभी शहीद सैनिकों और भारतीय सेना के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। चाहे युद्ध का मैदान हो या कोई प्राकृतिक आपदा, हर तरह की विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना देश के लिए हमेशा तैयार रहती है। निस्वार्थ भाव से काम करते हुए लोगों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाती है। हम सभी को अपने अमर शहीदों पर गर्व है, अपनी सेना पर गर्व है, जो निस्वार्थ भाव से काम करते हुए अपने को बलिदान करने से भी नहीं डरती। हम सभी को चाहिए कि अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना रखें, अपनी मातृभूमि को माँ के समान इज्जत दें, एक दूसरे से प्यार करें, देश हित में सोचें और अपने कर्तव्य को पूरा करते रहें। जब हम खुद को मजबूत रखेंगे, हम में एकता बनी रहेगी, तभी हम मुसीबतों का सामना अच्छी तरह कर पाएंगे। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही जोश से भरा देशभक्तिपूर्ण गीत।

इस गीत के बाद आइए बातें करते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर, जो कि हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। बच्चों, हमारे आसपास साफ सुथरी हवा रहे, चिड़ियों की मधुर चहचहाहट बनी रहे, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ मौजूद रहें, पहाड़ों की श्रृंखला बनी रहे, जंगल का जीवन सुरक्षित रहे, बचा रहे, जैव विविधता बची रहे, प्रकृति और इंसान का जो रिश्ता है वो और मजबूत हो, मानवता बची रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति संरक्षण के लिए जागरूक बने, अपने रोज के जीवन में कुछ जरूरी बदलाव लाएं, तभी प्रकृति हमें बचाएगी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम जागरूक बने प्रकृति के प्रति। बच्चों, प्रकृति क्या है? प्रकृति के तीन मुख्य अंग हैं, जल, जंगल और जमीन। इनके बिना प्रकृति अधूरी है। आज प्रकृति के इन तीनों ही अंगों का इतना दोहन किया जाने लगा है कि इनका संतुलन ही डगमगाने लगा है। यही कारण है कि आज कहीं भयानक बाढ़, तूफान, भूस्खलन या अन्य कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं सामने आने लगी हैं। हमें यह स्वीकार करने में थोड़ा भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इन सब के जिम्मेदार हम मनुष्य ही हैं। पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा मौसम चक्र में आ रहे बदलाव के कारण जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि इन प्रजातियों के लुप्त होने का सीधा असर समस्त मानव जाति पर पड़ेगा। यदि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा सामने आती है तो अक्सर लोग प्रकृति को ही दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझना चाहते कि प्रकृति तो रह रहकर अपना रौद्र रूप दिखाकर उन्हें सचेत करने का प्रयास करती रहती है। अगर हम अब भी नहीं समझे और हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया, तो हमें आने वाले समय में इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। प्रकृति हमारी माँ के समान है, जो हमें प्राकृतिक खजाने से ढेरों बहुमूल्य चीजें प्रदान करती हैं। लेकिन अपने स्वार्थों के चलते अगर हम खुद को ही प्रकृति का स्वामी समझने की भूल करने लगें, तो फिर भला प्राकृतिक तबाही के लिए प्रकृति को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? बल्कि दोषी तो हम स्वयं ही हैं। लोगों को खुद में बदलाव लाना होगा, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए फोर व्हीलर या बाइक का सहारा न लेकर पैदल ही जाकर वह काम किया जा सकता है। छोटे छोटे कार्य के लिए निजी वाहनों का सहारा न लेकर, जहाँ पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन के सीमित साधनों को बचाया जा सकता है, वहीं पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखने में अपना अहम योगदान दिया जा सकता है। वैकल्पिक ऊर्जा जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करें, जैविक खाद का उपयोग करके अपनी सब्जियां उगाएं, बिजली का कम उपयोग करें, यानी अपनी जरूरतों में से किन तरीकों से बिजली की बचत की जा सकती है उस पर ध्यान दें। प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग या कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण

0: निरीक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करें और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। अभी हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर कर रहे थे बातें। और बच्चों, लेते हैं कार्यक्रम में यहीं पर एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
2: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
2: जैसे UPI से।
1: अच्छा,
2: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आग में पुनः आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में बच्चों आप सुनते हैं एक कहानी।
2: हाँ दीदी, आज भी आप सुनाइए ना एक कहानी, अच्छी सी कहानी, मजा आएगा।
1: तो चलिए सुनाती हूँ आपको एक कहानी। कहानी है एक नन्हे से पेड़ की। भले ही वह पेड़ था कद में छोटा, पर था बड़ा मजबूत। वह दूसरे पेड़ों से थोड़ा अलग था। एक दिन नन्हा पेड़ खुद से बोला, कैसे सुई जैसे पत्ते मिले हैं मुझे, और मेरे पड़ोसियों के पत्तों को देखो, कितने सुंदर हैं, हरे भरे, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता। हाय, काश मुझे सोने के पत्ते मिल जाएं, फिर मैं स्वर्ण वृक्ष बन जाऊंगा। दिन ढल गया और नन्हा पेड़ गहरी नींद में सो गया। जैसे ही सवेरा हुआ, एक अजूबा हुआ। नन्हा पेड़ खुशी से झूम उठा और बोला, अरे वाह, देखो तो मुझे कैसे सोने का बेबी डॉल लग रहा हूँ। अरे, मैं बन गया स्वर्ण वृक्ष, सोने का पेड़, सबसे कीमती। और जानते हो बच्चों फिर क्या हुआ? शाम के समय वहाँ एक आदमी आया। उसकी नज़र नन्हे पेड़ पर पड़ी तो वह हैरान हो गया। सोने की चमक देखकर वो तो जैसे पागल हो गया और बिना कुछ सोचे समझे सारे पत्ते तोड़ने लगा। सोने के पत्ते थे ना वो तो, और सारे सोने के पत्ते लेकर चला गया। नन्हा पेड़ बहुत मायूस हो गया, रोने लगा और बोला, हाय हाय मेरे सोने के पत्ते, हाय मेरे सभी पत्ते तोड़ लिए। हे भगवान, सोने की पत्ते की जगह कांच की पत्तियां ही दे दो, कम से कम कोई आदमी उन्हें तोड़ेगा तो नहीं। भगवान, मुझे कांच के पत्ते दे दो प्लीज। बहुत उदास हो गया नन्हा पेड़ और सो गया। सुबह उठा तो खुद को कांच की पत्तियों से ढका पाया, जिसे देखकर नन्हा पेड़ बहुत खुश हो गया और बोला, आहा, मेरे पत्ते कितने सुंदर कांच के, जो चमक थमक मुझ में है किसी और में कहां। तभी आया एक जोरदार तूफान, खतरनाक हवा चीरते हुए आई और कांच की पत्तियों से टकराई। सब चूर चूर हो गया, कांच की सभी चमकदार पत्तियां टूट कर गिर गईं। मायूस नन्हा पेड़ बोला, हाय मेरे कांच के पत्ते, सब चूर चूर हो गया, मैं फिर से गंजा पेड़ बन गया। मेरे पड़ोसी पेड़ उनकी पत्तियां कितनी हरी भरी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। हे भगवान, अब तो मेरी यही इच्छा है कि मुझे हरे भरे पत्ते ही दे दो। सुबह हुई तो नन्हा पेड़ फिर से हरी भरी पत्तियों से ढका हुआ था। वो बहुत खुश हुआ, अब वह दूसरे वृक्षों की तरह हरा भरा और सुंदर दिख रहा था। वो खुशी से झूम कर बोला, अरे देखो तो मुझे, लग रहा हूँ ना मैं टिप टॉप, बिल्कुल अपने पड़ोसियों जैसा, सेम टू सेम, मैं भी हो गया हूँ अब हरा भरा। तभी थोड़ी देर में एक बकरी खाने की तलाश में अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ वहाँ आई। नन्हे पेड़ के नए कोमल पत्तियों को देखकर उसका मन ललचा गया और बस वह टूट पड़ी खाने के लिए। उसके बच्चे भी कोमल पत्तियों को मजे से खाने लगे और खाते गए खाते गए, एक भी पत्ता नहीं बचा। और नन्हा पेड़ फिर से रोने लगा, नहीं चाहिए मुझे कोई भी पत्ता,

0: न सोने का न कांच का, न हरा न लाल न पीला। नहीं करूंगा अब शिकायत फिर कभी, बस है एक आखिरी इच्छा, क्या मिल सकती है मुझे फिर से सुई जैसी पत्तियां? कम से कम कोई खा तो नहीं सकेगा। इतना कहते कहते नन्हा पेड़ मायूस मन के साथ सो गया। सुबह उठकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सब कुछ ट्राई करने के बाद उसे अपना पुराना रूप ही पसंद आया। इससे यह पता लगा कि जो भी हमारे पास होता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत सोच समझ कर ही हमें वो सब कुछ देते हैं, है ना बच्चों?
1: जी।
0: और बताइए क्या सीखा इस छोटी कहानी से आपने?
2: यही कि हमें हमेशा खुश रहकर काम करना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं, लेकिन यदि मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे।
0: बिल्कुल, मन में संतोष रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सभी लोग आपको पसंद करें, आपको अच्छा कहे, तो इसके लिए आपको खुद में बदलाव लाना होगा। यदि आप खुद को अच्छा बना लेंगे, यानी मेहनत से पढ़ेंगे, बड़ों की बातें मानेंगे और भी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, तो आप सभी के चहेते बन जाएंगे। सारी दुनिया आपको बदली सी दिखाई देगी।
2: यानी दीदी, सबको बदलने से अच्छा है कि खुद ही बदल जाओ।
0: बिल्कुल, खुद में ही वैसे गुणों को अपनाएं जो आपके लिए भी अच्छी हो और दूसरे भी उसे पसंद करें। बच्चों, धरती पर हमारे जीवन को सुरक्षित बनाए रखने में और प्रकृति में खाद्य श्रृंखला और जीवों में संतुलन बनाए रखने में टाइगर यानी बाघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक कारणों से आज यह जानवर लुप्त होने के कगार पर है। इनकी सुरक्षा और खत्म होने से बचाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे बाघ और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा हो सके। बाघों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध आवास का मतलब है कि हम अन्य प्रजातियों और हमारे जंगलों का भी संरक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था, जब यह पाया गया था कि पिछली शताब्दी में सभी जंगली बाघों में से 97% खत्म हो गए थे, जिनमें से केवल 3,000 शेष बचे थे। हमारे देश में एक अनूठी योजना के साथ प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। पहले 9 बाघ अभयारण्य थे, लेकिन समय के साथ बाघ परियोजना का दायरा काफी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम उन्हें विलुप्त होने से बचाएं, उनके प्राकृतिक आवासों यानी जंगल की रक्षा करें। लोगों में बाघों के संरक्षण और जंगलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कर रहे थे बातें और देखते हैं आप सब बच्चे हमें क्या सुनाने वाले हैं।
3: सबसे पहले आप बताइए कि आपका क्या नाम है?
4: श्रुति कुमारी।
5: क्या सुनाएगा श्रुति?
4: दीदी, मैं वर्षा बहार पे कविता सुनाऊंगी।
0: सुनाइए।
4: वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अंगूठी घंघोर छा रही है, बिजली चमक रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं, चलती हवा है ठंडी, खिलती है डालियां, सब बागों में गीत सुंदर गाते हैं मालिने, अब तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखो पपी है कृष्ण ताप होते, करते हैं नित्य वन में देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे गाकर गीत ये प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहे हैं, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहे हैं, चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जग की शोभा निर्भर है इसके ऊपर।
3: वर्षा बहार पर श्रुति ने बहुत ही प्यारी कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा।
0: और बच्चों, अब समय हो गया है कि कार्यक्रम का पता बता दिया जाए, ताकि आप कार्यक्रम संबंधी अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकें। तो

0: लिख लीजिए कार्यक्रम का पता। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम अंकुर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर लिख भेजे अपने पत्रों को, रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाजत। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। पेश है भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार।

आवाज थी आयुष प्रकाश की। एल्बम का नाम सैया छोड़ कहा है गईला। अगला गाना एल्बम बाय बबुनी से, आवाज़ विवेक हरिहरन की।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार FM बैंड के 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीक

0: आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
0: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया।

किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए, इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए, हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है।
हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी।

अच्छी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज

जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने का मेरे लिए ये भी बात है। पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। मैं आप सभी से कहूंगा, सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को जोड़े, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आपने लगाया एक छोटा

भी जानते हैं कि बड़ी चुनौती प्रकृति को नुकसान पहुंचा।

रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीखना प्रयास में बताया आज के

0: Me preguntaba, ¿a qué? ¿A qué ha apoyado? आती है उसके
1: जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले ही इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेताओं की सृजनशीलता है। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से हर प्रधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है,

तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्यौहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।

0: साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए, मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृङ्खलाः, दुष्करं वातावरणं, शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मा भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपि तु नूतन सन्ततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य 14 दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रिय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृतियोग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधिक्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृजलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृजलपोतः भारते एव परिकल्पितः निर्मितश्च वर्तते। एतस्य निर्माणे प्रतिशतं 75-मितादपि अधिकानां स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः जातः। आत्मनिर्भर भारतस्य वर्धमानायाः शक्तेः प्रतीकभूतः अस्ति एषः। एतस्मिन्नेव मासे DRDO इत्यनेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इत्याख्यस्य प्रक्षेपकस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतम्। एतस्याः सफलतायाः कारणभूतः अस्माकं वैज्ञानिकानां अभियन्त्रीणां च सामूहिक परिश्रमः अस्ति। द्वित्रदिनेभ्यः पूर्वं DRDO इत्यनेन कुशा मिसाइल इत्याख्यस्य प्रक्षेपकास्त्रस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतमेव। सखायः, कामम अद्

0: This is Akashvani.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म एलओसी करगिल से। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, जावेद अख्तर की रचना है, अनु मलिक का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: के नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: जाली उनकी यादों की 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: सुनिए।

हकीकत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। ये उपकार फिल्म का गाना है मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और अनगिनत श्रोताओं की अनगिनत टिप्पणियां आई हैं और हम आपको बारी बारी से सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, भाई बहनों के साथ खंडवा के बीच लगने वाले नाम सप्ताह के मेले में जाना, झूले झूलना, वो चहल पहल और फिर वही परंपरा अपने बच्चों के साथ दोहराना। ये अनुभव दिल के बहुत करीब होता है। वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है, लेकिन शहर और वहाँ के मेले से जुड़ा लगाव कभी कम नहीं होता। एक श्रोता ने और लिखा है कि मेले का जिक्र हुआ तो अभी हमारे शहर में मेला लगा हुआ है और ये गाना, ये बात सुनकर हमें याद आ गया। तो ज़रा बताइए कि मेले वाली कौन सी याद इस वक्त आपके जहन में आई है? मेले में कौन सी चीज़ आप जाकर खरीदा करते थे? क्या वो मेले में जाकर वो जो बुढ़िया के बाल है वो याद आया कि वो खरीदते थे, और खिलौने मिट्टी के, लकड़ी के बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले आते थे वो याद आया? और फिर जो सस्ते दामों पर किताबें मिलती थी क्या वो भी याद आया? और वो भी याद आया कि कभी अपने पिता की उंगली थामकर, माँ की उंगली थामकर मेले में आप घुमा करते थे, और कभी उंगली छूट गई तो कितनी घबराहट होती थी, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अरे कहाँ गए, बस रोना आता था। कभी ऐसा भी हुआ? मेले में जाने के बाद तो अनगिनत अनुभव हैं, तो उनमें से कुछ अनुभव आप साझा कीजिए। फिलहाल चलिए मेले का ही गाना सुनवा देते हैं, ये रहा ये गाना। अगर हाँ आपके जहन में और कोई गाना आ रहा है तो जरूर बताइएगा। अगर आपने टिप्पणियां भेजी तो एक गाना मेले का और सुनवाएंगे।

मेला फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे। और इससे पहले हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, रविशंकर का संगीत था। और कलाकारों के नाम भी हमने पूछे थे, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल पूरी और सही जानकारी लिख भेजी है। और ये जो मेले वाला गाना था, इससे जुड़ी हुई भी बातें बहुत सारे श्रोता हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में दशहरे का मेला जाते थे और वो मजा आज के बच्चे नहीं जान सकते हैं, और मेले से खिलौने खरीदा करते थे, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा फिल्म का कालजयी गाना और सुनहरे पलों की याद और वर्तमान के अकेलेपन की एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति है। दरअसल जब बात मेले की चली है तो हम भीड़ भरे मेले में होते हैं कई बार, तब भी अकेलेपन का एहसास होता है, उस एहसास को भी आप साझा कर सकते हैं। एक आज के ज़माने में खासतौर से ये एहसास हर किसी के दिल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी की आवाज़ जो, हाय रे वो दिन क्यों ना आए।

दिल की अतल गहराइयों में उतर जाती है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1968 में उज्जैन कुंभ मेला संतों की भीड़ भरी रैली में माता जी का हाथ छूट गया। शाम को जाकर पुनः उसी जगह माता जी और अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई, राहत की सांस ली। एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में तो मेला देखने बहुत जाते थे, कुल्फी चाट पानी के बताशे खूब खाते थे और खिलौने खरीदने के लिए पैसे पहले से बचाने लगते थे। विजयदशमी पर तो मेला लगता ही था, उसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती। क्या बात है भाई, पानी वाले जो बताशे जिसे पानी पूरी भी कहा जाता है, और मेले में झूले झूलने का मजा भी होता था, एक श्रोता ने लिखा है। और मेले में जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता था जो अनुभव, वो था जो हिंडोला, जो बड़ा वाला हिंडोला गोल गोल चलता है, तो जब ऊपर की ओर जाता था हिंडोला तब तो ठीक, जब नीचे की ओर आता था तब कैसा एहसास होता था, ऐसे लगता था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और बिल्कुल दिल मुंह में चला आया है ऐसे। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी चलने का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, राह में कांटे भी मिलेंगे फूल भी मिलेंगे, प्यार बेवफाई सपने को सच भी करना है, ख्वाब देखना उसे पूरा करने की चाह,

था हिंडोला तब तो ठीक, जब नीचे की ओर आता था तब कैसा एहसास होता था। ऐसे लगता था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई और बिल्कुल दिल मुंह में चला आया है। ऐसे एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी चलने का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, राह में कांटे भी मिलेंगे फूल भी मिलेंगे, प्यार बेवफाई सपने को सच भी करना है, ख्वाब देखना उसे पूरा करने की चाह, तभी पूरा होगा जब हौसला हो। अब ये महल फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। हमने जो इबारत लिखी थी उस इबारत में कौन सा ये शब्द आ रहा है, जरा बताइए गाने में कौन कौन से शब्द हैं। गीतकार संगीतकार का नाम बूझिए।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया। कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरेगी वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिली नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूँ सबसे पहले ऊंचाई वाला झूला जरूर झूलता हूँ, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन जरूर मैं खरीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़िया भी। फिर हम अपने छोटे से घरौंदे में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का गिलास, कीमत हर माल 6 आना का खरीदा। उसमें पानी भरने पर अंदर फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो दिखाई देते थे, उसे स्कूल के साथियों को दिखाते थे। क्या बात है भाई, गजब के अनुभव हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक हम नहीं बैठ पाए। और गानों के बोल बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बलिया में ददरी मेला लगता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा से वो मेला शुरू हो जाता है और एक महीना चलता है। उस मेले में गुड़ की जलेबी और गांव की महीन कारीगरी डलिया सूप और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शादी के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगता है जो रात के टाइम लगता है और पूरी रात चलता है। इस मेले में नौटंकी भी आप देख सकते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। सचमुच एक जमाना था जब मेले में नौटंकी भी खेली जाती थी, तो नौटंकी देखने के लिए अलग से घर वालों से परमिशन लेना पड़ता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ? एक श्रोता ने लिखा है कि 90 के दशक में हमारे इंदौर शहर के गांधी हॉल में सावन का मेला लगता था और उस मेले में हर सोमवार को बहुत भीड़ होती थी। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत पीपल के पेड़ पर रस्सी पर बंधा हुआ पटिया लगा हुआ झूला हुआ करता था। अब बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, सपने, वादा, वफा, कांटे, दुनिया, दिन वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम की भावना को इस सतर्क दृष्टि से जीना कि वो अंततः सुखद होगी या दुखद। प्रेम है, प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। टूटने बिखरने की पीड़ा, धोखे का दर्द और प्रेम की राह पर आने वाले धूप छांव, इन सब से इतर वो जब होता है तो बस होता है। आप चाहें न चाहें वो आपके साथ हो लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। शांत स्वभाव यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थिति और जीवन की समझ आपको राख में परिवर्तित करके आपके मन को ठंडा रखती है। प्रेम और जीवन का कोई बदलाव फिर आप पर असर नहीं करता, आप हर समय चुपचाप चलना सीख जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, बूझिए कौन है हीरो और बूझिए गीतकार का नाम। हीरो का नाम फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिल्म है दिल ने पुकारा।

रिंग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज खरीदता हूं। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप जरा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी, तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतजार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो जरूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए, और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा, जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास, जहां विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है। कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें, और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं, और ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल में है, जो चलती है, तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल अपने अपने अनुभव, लेकिन वो जो असली मेला लगता था, खुले मैदान में बहुत सारी चीजें होती थीं, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़कर चला जा रहा था। एक छोटा पड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया, और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की खरीदारी हो सकती है। तो ऐसे में कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है? वो वाला मेला, बचपन वाला, ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था, जो 1 महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे बचपन में। गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल बात हमने पूछी थी आपसे कि जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए, प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको पूछना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम। बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

0: उस राह पे राह ही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफर में वही यादों का सफर है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरी जिंदगी का हिसाब देखता हूं तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये जिंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही जिंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है, हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारे हिंदी की किताब में होती थी। हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और इस वजह से दादी ने पाला था और बहुत गरीबी में पाला था। और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो हामिद को ईद के दिन क्या तोहफा दें, क्या लाएं और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो। यहाँ दादी सोच रही होती है और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ जलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं आप? फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: फिल्म का नाम जरा बताइए।
1: मिले न फूल तो कांटों

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल, रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है, परीक्षित साहनी जाहिदा, सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, यहाँ कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए, नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है, कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है, और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। जरा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं, फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

0: फूलों के शहर में घर अपना भी सपने वाला ये गाना था। बहुत सारे सपने अधूरे वाले गाने भी हैं और हमारी भारत में सपना शब्द था। लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल। और पूछा था हमने हीरो हीरोइन का नाम, सभी ने फौरन बताया कुमार गौरव, विजेता पंडित। एक श्रोता ने ये भी लिख डाला है कि प्रमुख कांटे वाले फूलों के नाम भी बता दिए, गुलाब है, बोगनविलिया है और बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं।
1: चार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में आज अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। श्री मोदी ने करगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को याद करते हुए कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कैच द रेन विशेष अभियान 4 जुलाई से पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके तहत

0: वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्धार को नई गति मिल रही है। श्री मोदी ने इस अभियान में गांव और शहरों से लेकर पंचायतों और सामाजिक संगठनों तक की जबरदस्त भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों से गाद हटाई जा रही है और कुओं तथा बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब भू जल पुनर्भरण के लिए बोरवेल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक प्रदूषण पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का कचरा प्रकृति के लिए नुकसानदेह बना हुआ है। उन्होंने प्लास्टिक के उचित निस्तारण पर बल दिया। श्री मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में कचरे से कंचन का एक उदाहरण दिया, जहां कचरे को दोबारा उपयोग करके सुंदर बेंच बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि यह दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि देश में जिस तरह से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना तक और कुत्थमपल्ली से कक्ष तक इसके कई उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री ने खादी के बारे में कहा कि पिछले 12 वर्षों में खादी की बिक्री 6 गुना बढ़ी है। अब ये बिक्री लगभग 8000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। श्री मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारी मौसम में खादी, हथकरघा या हस्तशिल्प से बना कम से कम एक उत्पाद खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन होता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एकजुट किया है और इस वर्ष भी इसे पूरे उत्साह से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने सभी से एक बार फिर 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता अर्जुन राय ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। श्री राय ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री राय ने वर्ष 2000 में औराई से राजद प्रत्याशी के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। बाद में वे जदयू में शामिल हो गए। 2019 में उनकी राजद में वापसी हुई थी। राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में कमी आई है। इसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न भागों में बहुत कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जहानाबाद में सबसे अधिक 4.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल के बाद एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा की परिस्थितियां बन रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट सियासी तआवुन और दोस्ताना ममालिक के मामले में लगातार नई बुलंदियों को छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम की 136वीं कड़ी में आज अपने तासुरात को शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत हर शोबे में तरक्की कर रहा है। जनाब मोदी ने कारगिल यौम-ए-फ़तह पर बहादुर फौजियों को याद करते हुए कहा कि ये दिन मुल्क के बाशिंदों को अपने बहादुर फौजियों को गैर मामूली बहादुरी की याद दिलाता है और हर हिंदुस्तानी का फ़ख्र से सर उनका बुलंद कर देता है। उन्होंने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले

फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क के बाशिंदों से अपील की कि वो एक महफूज अहल और खुद इन्हिसार भारत की तामीर का अज़्म करें। वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन खुसूसी मुहिम 4 जुलाई से पूरे मुल्क में चलाई जा रही है। इसके तहत बारिश के आबी ज़खीरा, ज़मीनी आबी तलाफी और आबशारों और बागानों की मरम्मती को नई रफ्तार मिल रही है। जनाब मोदी ने इस मुहिम में गांव और शहरों से लेकर पंचायतों और समाजी तंजीमों तक की ज़बरदस्त शराकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों से गाद हटाया जा रहा है और कुओं और बावड़ियों की मरम्मत की जा रही है। अब ज़मीनी आबी ज़खीरा के लिए बोरवेल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्लास्टिक आलूदगी पर तजस्सुस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सिंगल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक का कचरा कुदरत के लिए नुकसानदेह बना हुआ है। उन्होंने प्लास्टिक के मुनासिब तसर्रुफ पर जोर दिया। जनाब मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में कचरे से कंचन की एक मिसाल दी, जहाँ कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके खूबसूरत बेंच बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी उन बेशुमार शहीदों को याद करने का दिन होता है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सारा असासा निछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरसों में हर घर तिरंगा मुहिम ने पूरे मुल्क को मुत्तहिद किया है और इस साल भी इसे पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाना है। उन्होंने सभी से एक बार फिर 15 अगस्त से पहले माई गाँव पोर्टल पर अपने तासुरात और सलाह को शेयर करने की अपील की। वज़ीर आज़म ने 7 अगस्त को मुल्क भर में मनाए जाने वाले कौमी हथकरघा दिन का जिक्र करते हुए कहा कि ये दिन मुल्क के बुनकरों के हुनर और तख्लीकी सलाहियतों के एहतराम की अलामत है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में जिस तरह से हथकरघा सनत को फ़रोग दिया जा रहा है, इससे कसीर तादाद में लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। पूचमपल्ली से पटना तक और कोथमपल्ली से कच्छ तक इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़श्ता 12 सालों में खादी की फरोख्त 6 गुना बढ़ी है। अब यह फरोख्त तकरीबन 8,000 करोड़ तक पहुंच गई है। जनाब मोदी ने लोगों से आने वाले त्यौहारों के मौसम में खादी, हथकरघा या दस्तकारी से बनी कम अज़ कम एक मसनूआत खरीदने की अपील की। सीतामढ़ी के साबिक रुकन पार्लियामेंट और आरजेडी के सीनियर रहनुमा अर्जुन राय ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जनाब राय ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जनाब राय ने साल 2000 में और ओराई से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर अपनी सियासी पार्टी की पारी की शुरुआत की थी। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। 2019 में उनकी आरजेडी में वापसी हुई थी। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून की सरगर्मी में कमी आई है। इसकी वजह से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है। महकमे मौसमियात से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक जहानाबाद में सबसे ज़्यादा 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहा है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि कल के बाद एक बार फिर मानसून के फ़आल होने का इम्कान है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.com

www.rails.nic.cu.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC, पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश
1: ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा

0: ने आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विश्व

0: है। लोकतक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकतक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा

0: संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9958 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर चार भारतीय सवार थे, इनमें से दो भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म है जब जब फूल खिले, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप

0: आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: मोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भीगी रात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। छोटी छोटी बातें ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना है शैलेंद्र की।

छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

0: ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी
0: औसी मेरी बच्ची।
2: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: चुप हो जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी।
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहां कैसे?
3: जी जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी फौजी, जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हां सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी मां तो नहीं।
1: मां की ममता से इसकी झोली भरती।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है।
3: नीलम जी,
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब भी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अभी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे

0: प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं।
1: जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मजा आए, और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविजन की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविजन नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए, और अरुण को तो 3 साल अलका जी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था, और अलका जी साहब फिर आगे वहाँ रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्य द्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पे नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंसवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे गायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए,
1: वाह वाह,
2: है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे, और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहाँ से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया

0: मिल गई हमको वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर तो, और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं, वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को
1: राजी नहीं थे।
0: राजी नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके, 10 रुपए में, 25 रुपए में, जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है। तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए, एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुना तो था ही, हाँ। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं, वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे। तो और जैसा मैंने कहा, उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिड़गिड़ाए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ दिया कि हम फलां दिन को हम आपके दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई। मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, विच इज सो सैड।
1: जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा।
1: हाँ जी
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: हाँ, एक
0: लगातार
1: पंजाबी में भी किया
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्भार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मज़े की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मज़े से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊँ मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी
1: हाँ,
0: किया था उसको लेके,
1: नहीं टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया था।
1: दिल्ली में किया। हाँ, और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, यार समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो। हर चौथे पांचवें दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पाँच छः दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जा तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है, वगैरह वगैरह
0: अरे
1: वगैरह।
0: बाप रे,
1: और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था
0: फगवाड़ा
1: चंडीगढ़
0: का,
1: का,
0: चंडीगढ़
1: हाँ
0: का।
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे, और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है, हाँ वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी, और जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के, फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग।
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया,
1: जी
0: मराठी
1: जी
0: नाटक पंजाबी में होने
1: जी
0: लगा।
1: हाँ,
0: यहां से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याद याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता, लेकिन
0: जहां तक मुझे याद है
1: जब
0: आप आकाशवाणी भवन गई थी।
1: हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ, एकदम वहाँ से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
0: जी
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन, जी
1: हाँ
0: जी
1: हाँ डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो एक साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग।
1: एब्सोल्युटली, जलाल आगा,
0: ओहो,
1: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर
0: श्याम
1: था
0: बेनेगल
1: श्याम
0: के
1: बेनेगल
0: एक्टर,
1: की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक
0: दस्तक
1: की
0: फिल्म
1: हीरोइन, फिर राकेश पांडे।

0: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
1: उनको लेके
0: भोजपुरी
1: एक फिल्म
0: सिनेमा
1: लॉन्च
0: का,
1: हुई थी संगत,
0: किसकी?
1: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
0: हाँ
1: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
0: नहीं, उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना, बाशु चटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
1: उसमें
0: उसका
1: थे
0: हीरो था,
1: जी,
0: हाँ राकेश,
1: बाद में
0: वेरी
1: वासुदा ने
0: वेरी
1: एक
0: नाइस
1: फिल्म
0: फिल्म।
1: लॉन्च की थी संगत, उसमें भी
0: अच्छा
1: वो हीरो थे पर वो बनी
0: वो
1: नहीं।
0: नहीं, वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने। यहाँ तक कि मुझे एक बार, फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ
1: स्टार बन
0: बच्चन
1: गया
0: है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे, तब
1: जी
0: दुबला
1: जी
0: पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया,
1: शैलेंद्र
0: बहुत
1: सिंह
0: मजा
1: वगैरह भी
0: आया।
1: थे।
0: नहीं, मेरे
1: अच्छा
0: क्लास में नहीं ना, तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे, तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने, कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देश पांडे,
1: वाह वाह
0: हाँ
1: वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली सही, बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्यों ना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया, और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
1: क्या बात है,
0: कि
1: ये
0: हाँ
1: ख्वाब भी नहीं था
0: ख्वाब
1: कि
0: भी नहीं
1: अब
0: था,
1: ये जगह
0: हाँ
1: जिंदगी ले
0: ये
1: जाने वाली
0: मेरी
1: है
0: कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए,
1: जी।
0: और तब ये इश्तहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहाँ चुनी गई मैं, और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे भारत के, पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या
0: कहने
1: शानदार
0: कह,
1: बात है,
0: हाँ
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह।
0: नाज के साथ मैं कहती हूँ, और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे,
1: पी
0: कुमार
1: कुमार
0: वासुदेव,
1: वासुदेव
0: पी
1: जी,
0: कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और
1: ओहो
0: हबीब तनवीर थे,
1: क्या बात
0: हाँ
1: है, वाह वाह
0: लेकिन
1: वाह।
0: हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में,
1: वाह
0: तो विच
1: वाह,
0: इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 मैजिक ईयर्स इन टेलीविजन, और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल यू नो कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे,
1: जी
0: हाँ और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मज़ा भी बहुत आया।
1: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई,
0: जी
1: अबू अवार्ड जीता
0: हाँ यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, हाँ
1: जी,
0: तेहरान में,
1: वो चाय की टपरी वाला जो
0: हाँ जी वो
1: वाली
0: छोटी
1: डॉक्यूमेंट्री
0: सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं है ना
1: जी।
0: टेलीविजन में, और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह,
1: बिल्कुल
0: और वो

0: छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था। और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वॉज, इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग। तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया और हाँ मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह से।
1: जी जी
0: हाँ
1: पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर,
1: किया
0: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री।
1: जी।
0: तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
1: हैंड
0: उनका
1: पेंटेड पोस्टर्स
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वैराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहां वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सका, पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहां हम पहुंच गए तो क्या बात करें वो लोग, और जब मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या बात
0: तुम
1: है।
0: लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे दे के टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसा नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा, अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी,
1: वाह
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की, और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक।

0: ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा। लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक, तुम देखोगे खुश हो जाओगे। और वो चलता है वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्ते देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई ये
1: पूरी
0: पूरी,
1: वो, क्योंकि
0: वो
1: अब उस
0: कौम
1: सब
0: कौम ही
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए,
0: हो गई।
1: है ना। MF हुसैन मिले थे जी,
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे NF हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू। मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे MF हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी
0: तोबा
1: परंपरा थी
0: हो,
1: जी।
0: तोबा तोबा। मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो बहुत खुशी से वो, हाँ, मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया। और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था तो
1: जी
0: जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा। और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, 8 अन्नी दिन की,
1: अरे अरे
0: 8 अन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये
0: यस,
1: ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको
0: कठिन,
1: तोलो तो ये नाराज
0: यस,
1: वाला जो
0: हाँ
1: मामला था
0: नहीं,
1: वो
0: वो
1: बताइए।
0: कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी,
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को।
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए। तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को। वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ, वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज पलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद,
1: हाँ
0: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म। ऐसे नहीं नहीं दादा, ऐसे कैसे वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज, ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह बुला
0: पुकारते
1: करते थे
0: थे।
1: और खरजदार आवाज में,
0: हाँ
1: रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के
0: माय
1: बोलते
0: डियर सिस्टर करके फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना
1: मतवारे
0: मतवाले,
1: तिहारे
0: हाँ,
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ। तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो, और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया। और फिर दादा उसमें रंग में आए और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे, हाँ, उन्होंने कहा
1: वाह
0: वैसे
1: वाह,
0: क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया। और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किस्से सुनाए ये करिया, फिर अब राय चंद बोराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर।
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बोराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं, हाँ, मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी,
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास

0: अस का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फलाद आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बोराल साहब के पास गए। बोराल जी ऐसा नहीं,
1: अरे
0: पंकज से
1: बाप
0: उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये,
1: रे
0: अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
1: कैसे
0: मैंने
1: मनाया
0: कहा
1: जाता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलाने का ये वो। फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह, और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि
1: वाह,
0: पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और
0: और
1: शख्स को अपनाया आपने।
0: हेमंत कुमार बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी। ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी। लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है।
1: ओ हो।
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना, पंकज
1: जी
0: मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई
1: वाह,
0: आई बहार।
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है। 40s की फिल्म है, शायद
0: जी
1: 41 की
0: जी
1: फिल्म है,
0: जी
1: आई
0: जी
1: बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए ना मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहां इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता।

0: आशा,
1: विच इज नॉट ट्रू.
0: विच इज नॉट एट ऑल ट्रू. आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था. तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी. और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, लक्स चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह. तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म, टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी.
1: जी
0: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स. हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज.
1: जी
0: देन इन माई फिल्म दी लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. देर आर सो मेनी डिफरेंसेज. इनफैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हर सेल्फ, अरुणा ईरानी,
1: जी
0: डाइज यू नो इन द फिल्म. सो अगेन एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो देर इज नथिंग, रियली नथिंग. इट वॉज नॉट एट ऑल
1: लोगों
0: अ
1: ने जबरदस्ती उसका कनेक्शन बना
0: बायोग्राफिकल
1: लिया.
0: फिल्म नहीं थी.
1: जी
0: हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स. बट आई टेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वॉज ब्लू इन द फेस. पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है. दे आर कन्विंस कि नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई. पर अब एंड
1: राफी साहब को
0: अनको
1: कैसे राजी किया?
0: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, वो बहुत माने. ही गेव गुड म्यूजिक, बट आई हैड फोर म्यूजिक डायरेक्टर्स
1: जी,
0: प्रेजेंट.
1: पहली बार ऐसा हुआ.
0: या क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग भाई ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल. सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेंद्र हजारिका,
1: जी
0: फोर पीपल. एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टुगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स,
1: जी
0: नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल. हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया. बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड. तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड. एक भी फिल्म 2-3 दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक. एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So, Saaz didn't have a theatre.
1: अरे
0: तो
1: अरे
0: फिर
1: अरे.
0: टेलीविजन पे दिखाई,
1: जी जी जी
0: तो ऐसा ऐसा हुआ. सो बैड लक ऑल द वे. सो इट्स नॉट बीन अ जो एक हैप्पी ये होता है ना एक्सपीरियंस, तो अनफॉर्चुनेटली Saaz वॉज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी.
1: जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं. यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ. एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो
0: जी
1: एक
0: जी
1: तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए
0: हाँ
1: मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव
0: संजीव
1: कुमार या फिर
0: कुमार
1: वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं
0: वो
1: जानना चाहता
0: अभी
1: हूँ.
0: वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है.
1: जी
0: तो
1: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं.
0: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही. फिर
1: जी
0: मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे
1: जी
0: घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था. आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था. हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा. फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है. तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो. मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है. फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है. मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है.

0: तो वहाँ ले आओ स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मज़े का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे 5-6 दफे हुआ और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही, मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है। और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है। और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर 1 हीरोइन थी। और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे, वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा जब लिखी, तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है वो हवा में नहीं लिखा जाता,
1: जी
0: लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है। वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रही हो। कहती हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई है। संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया। और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं। और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही।
1: ओरेटरी वाला
0: फिर
1: सारा
0: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगी क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए, 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना। और फिर मिलते हैं, फिर हम मिल गए। और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुम्हें प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने

0: जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट। एंड देन शबाना नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेक अ गुड कपल, यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल्ड टू बेस्ट, और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो
0: बिल्कुल।
1: इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खास तौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूं,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी, जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया, तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी,
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल के
1: नॉवेल के
0: कहो।
1: डायलॉग में
0: हाँ,
1: बात हुई थी।
0: नॉवेल, और चार्ल्स डिकेंस जैसा
1: यस
0: नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा ये अच्छे, मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग। लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी। तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूं कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो
1: यही
0: चैप्टर
1: बात।
0: स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी हाँ,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि
1: उसका
0: मैंने
1: नाम
0: और
1: है
0: काम
1: एंड
0: भी,
1: देन वन डे।
0: एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है हाँ, उसका नाम है बार्किस,
1: बारकिस,
0: बार्किस। और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे
1: कनेक्शन
0: को
1: है।
0: चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा। और पिगटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए। तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी
0: चिकनी
1: चुपड़ी।
0: चुपड़ी हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: मतलब बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्किस क्या बला है क्या है हाँ। तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड।
1: क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला।
0: नहले पे दहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी
0: फिर काम शुरू हुआ, एंड ही वॉज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन, एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस
0: अकादमी का
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो।
1: जी

0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है। हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के। उन तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ, अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान ढिमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है। वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूं, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर लिया। ऐसे नहीं नहीं हो गया हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम ना। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूं, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है। उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर
1: नेशनल
0: अवार्ड,
1: अवार्ड
0: नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ, एक मजे की बात यह, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे? संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा। बड़े जिंदा दिल थे, तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सर कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तोप डाली? तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए। कहते अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता। बट दैट वाज अ वेरी
1: जिंदगी
0: स्वीट।
1: की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है, का
0: जब
1: कोई
0: बताइए
1: मुकाबला
0: जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए ये स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल।
1: तीन अवार्ड्स मिले थे।
0: जी, एक पट कथा के लिए, मेरी मेरी अपनी पट कथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ,
1: वो बताइए।
0: वो वहां बाशु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था,
1: जी
0: बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे, बाशु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बाशु के लिए।
1: क्या बात है,
0: यस,
1: वाह।
0: एंड ही हैड अ टेररिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: फिरोज रंगून वाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वेट गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च आई वॉज इन्वाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब अच्छे स्टार से। कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत
1: अनुभव।
0: गलत है कि स्टार हो तो। इसलिए बाशु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ

0: आशूष। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया, जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब। और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो, एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई।
1: लेकिन ये मजेदार बात है ये।
0: सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही
1: जी,
0: बासु का।
1: यहां मुझे लगता है तो अनुभव का गाना आप सुन लेंगे।
0: हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो मेरी
1: मेरी
0: जान,
1: जान मुझे जान
0: हाँ,
1: कहो,
0: क्या
1: गीता रॉय
0: बात
1: की
0: है,
1: आवाज।
0: कनू रॉय,
1: हाँ
0: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है,
1: जी
0: प्लीज
1: जी
0: जरूर जरूर सुन।
1: क्या बात।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।

0: समाचार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामलों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री

0: के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
0: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, सभा की शुरुआत हम करेंगे बेहतरीन भक्ति गीतों से और कार्यक्रम होगा वंदन। शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। इसके अंतर्गत भेंटवार्ता में आप सुनेंगे कैमूर बाघ आश्रयणी के अनुकूल प्रक्षेत्र विषय पर पूर्व DFO चंचल प्रकाशम से अर्चना की बातचीत। शाम 6:00 आप सुनेंगे एक बेहतरीन भोजपुरी लोकगीत कलाकार होंगी रीना सिन्हा।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर, गर्भवती महिलाओं का पोषण आहार विषय पर आप सुनेंगे वार्ता। वार्ताकार होंगी वैष्णवी भारद्वाज। शाम 6:40 पर हमारे श्रोता आनंद ले सकेंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत में। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके तुरंत बाद जिले के हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण। शाम 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। वंदन कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति गीत। पहला भक्ति गीत कुमार विशु की आवाज़ में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वंदन कार्यक्रम का अगला और अंतिम भक्ति गीत अनुराधा पौडवाल और राज सचदेवा की आवाजों में।

अनुराधा पौंडवाल और राज सचदेवा द्वारा गाए इसी बेहतरीन भक्ति गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण।

विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस महीने का अंतिम रविवार है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आषाढ़ का महीना वैसे भी बारिश का महीना होता है। आसमान में बादलों का डेरा और रिमझिम रिमझिम बरसातों का दौर आनंददायक लगता है। इस समय हम गमलों से लेकर क्यारियों में भी नए पौध लगा सकते हैं। वातावरण में पर्याप्त नमी सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त होती है। तो जुट जाइए जी जान से और लगा डालिए नए पौध। फलदार पेड़ और खुशबूदार फूलों वाले पौधे लगाए जाएं तो इस खुशी के क्या कहने। पर्यावरण की खूबसूरती के लिए भी पौध रोपण जरूरी है। पर्यावरण प्रदूषण संतुलन के लिए पौध रोपण संजीवनी सा है। पौधे हमें वह सब कुछ देते हैं जो खुशहाल जिंदगी के लिए आवश्यक। ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात हो या आरोग्य सुनिश्चय के लिए जड़ी बूटियां, ये दोनों ही चीज़ें हमें पौधों से ही मिल जाती है। बेशकीमती लकड़ियों की चाह में लोग पेड़ों की कटाई कर देते हैं, लेकिन होना यह चाहिए कि पेड़ों की कटाई रुकी जाए और नए पौधे लगाए जाएं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय से जुड़ी एक बातचीत भी आपको सुनवाएंगे। संदर्भ होगा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तथा साथ ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस की भी बात की जाएगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर हम कैमूर में विकसित किए जा रहे बाघ्य

आश्रणी यानी टाइगर रिजर्व की भी बात करेंगे और इससे संबंधित बातचीत भी सुनवाएंगे। अलावा इसके अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस और विश्व रेंजर दिवस की भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले इस अंक के वैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं। इस अंक के वैज्ञानिक हैं जॉन डाल्टन और APJ अब्दुल कलाम, और ये दोनों ही वैज्ञानिक आज की तारीख यानी 24 जुलाई से संबंध रखते हैं। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इसके तहत उन्होंने बताया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने गैसों के मिश्रण के लिए आंशिक दाब का नियम और कलर ब्लाइंडनेस की भी खोज की। 78 वर्ष की आयु में 27 जुलाई 1844 को जॉन डाल्टन का निधन हो गया। श्रोताओं, मिसाइल मैन के नाम से चर्चित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक प्रसिद्ध अभियंता एवं प्रख्यात वैज्ञानिक भी रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास में उनके योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में मुख्य वैज्ञानिक और DRDO प्रमुख के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। ज्ञात हो कि उस समय भारत ने राजस्थान के पोखरण में 11 मई और 13 मई 1998 को कुल 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध शिक्षक एवं दार्शनिक के तौर पर भी याद किए जाते हैं। 27 जुलाई 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो श्रोताओं, यह थी संघ से जुड़े वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा, और अब एक नज़र विज्ञान से जुड़ी नवीनतम खबरों पर। श्रोताओं, भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम 1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट बन गया। इसने पिछले 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। लगभग 22 किलोमीटर लंबा यह रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा में करीब 350 किलोमीटर तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस मिशन का नाम आगमन रखा गया है। रॉकेट में आधुनिक कार्बन कंपोजिट तकनीक, ठोस ईंधन वाले चरण और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया गया। मिशन के दौरान भारत और अन्य देशों के कई छोटे उपग्रहों तथा तकनीकी पेलोड को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। विक्रम 1 की सफलता केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि यह भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए नए युग का शुरुआत भी है। इससे देश की निजी कंपनियों को वैश्विक लॉन्च सेवाओं के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा और भविष्य में कम लागत पर अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना संभव होगा। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता और अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो श्रोताओं, यह थी विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरें, और अब बात विश्व हेपेटाइटिस दिवस की, जो 27 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक बलबवर के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष 2026 के इस दिवस का

0: थीम है हेपेटाइटिस। आइए इसे समझें, यानी हेपेटाइटिस के बारे में जाने तथा जागरूक बने। हेपेटाइटिस बी लीवर में सूजन पैदा करती है, जो मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के कारण पैदा होती है। हेपेटाइटिस सी का अब पूरा इलाज संभव है, जबकि हेपेटाइटिस बी के लिए सही समय पर इलाज जरूरी है। अतः इस बीमारी के प्रति सामाजिक कलंक और सीमित जानकारी को खत्म करना इस साल के अभियान का मुख्य केंद्र है। वैसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरस हेपेटाइटिस को वर्ष 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हम भी बने जागरूक और सही समय पर हो इलाज का प्रबंध। श्रोताओं, 22 जुलाई को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस है और वह है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। यह दिवस प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विलुप्त होते पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को बचाना और जल वायु तथा मिट्टी का संरक्षण करना। यह दिवस एक स्वस्थ पर्यावरण को स्थिर और स्वस्थ मानव समाज की नींव के रूप में मान्यता प्रदान करता है। व्यक्तिगत रूप से तो हम भी इस कार्य में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए हमें पौधरोपण को बढ़ावा देना होगा, पानी और बिजली जैसे संसाधनों की बचत करनी होगी तथा पॉलिथीन के इस्तेमाल यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से तौबा करना होगा। श्रोताओं, वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग रहते हैं और अनुमान है कि 2037 तक यह संख्या 9 अरब से भी अधिक हो जाएगी। इसका अर्थ है कि हम सभी प्रतिदिन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें तेजी से समाप्त भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक जल भंडार भी काफ़ी प्रभावित होगा। यही कारण है कि प्रकृति संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को तत्पर होना होगा। इसके लिए हम मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगाएं, जैविक खादों का इस्तेमाल करने, बिजली की खपत को भी कम किया जाए। इस विषय से जुड़ी अन्य बातों को जानने के लिए सुन लेते हैं यह खास बातचीत। संतोष कुमार जी,
1: जी
0: सहायक निदेशक पौध संरक्षण, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सही बात है कि आप अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में आपको जो है लैंड भी आ जाएगा, एयर भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा। ये तीनों चीज के कंपोजिशन के हेमिस्फीयर में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या बल्कि टेक्निकल टर्म में बोलिए तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो इसके पेरिफेरल्स में रह रहा है वही इन्वायरमेंट कहलाता है। उसी में किसी को माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, किसी को मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट कहने का मतलब हुआ लोकल एरिया का जो इन्वायरमेंट परसिस्ट कर रहा है, माइक्रो इन्वायरमेंट कहने का हुआ जो वाइड एरिया के लिए हो गया। तो इन्वायरमेंट ये तीनों से रिलेटेड है और ये तीनों को दूषित होने से हमें बचाना है। हम अपने श्रोतागण से मतलब ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इन्वायरमेंट का मतलब स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि हमको ना लैंड को दूषित करना है, ना हमको वाटर को दूषित करना है, नहीं हमको एयर को दूषित करना है। एयर को दूषित करने का साधन क्या क्या है? आप घर में जो है कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं उसका मिनिमम यूज करना है। चूंकि अब तो नीड हो चुका है तो करना है, लेकिन हमारा कहना है कि अनावश्यक ज्यादा यूज ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रिज जो है बेवजह ना खुले, या फिर आपका एसी जो है एकदम बिल्कुल समय पर चले, कुछ पीरियड के लिए चले, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। अगर आप पेड़ नहीं लगाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का क्रिएशन होता है। तो आप जो स्मोकिंग करते हैं, जो देखते हैं कि मैंने वाहन यूज कर रहे हैं बहुत पुराना वाला, वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। मिट्टी को पोल्यूट करने के लिए आप अनलिमिटेड खाद यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो पानी होगा उसको लीचिंग करेगा, सॉइल के प्रोफाइल में वो जाएगा, उसका जो फर्टाइल प्रोफाइल है वहां तक वो जाएगा, तो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा। अगर उसको नहीं मारेगा वो बाकी अगर किसी नदी में चल जाता है तो उस नदी नाला का पानी जो जानवर पिएगा तो वो अफेक्ट होगा। तो किसी न किसी तरह से आपको ये दिमाग में हर तरह से श्रोतागण को हम ये बोलना चाहते हैं जी।

0: में बिल्कुल इस बात को स्पष्ट रखना है कि हमको इन्वायरमेंट, वातावरण जो है, जल, वायु और स्थल, ये तीनों को दूषित होने से बचाना है। आप बिना कहे समझ जाइए कि स्थल को पोल्यूट करने का अभी भी कहीं कहीं कहीं कहीं हमको ऐसा दिख जाता है कि शौचालय अभी भी जो है, या फिर किए तो अपना चले गए नदी में, वो सब प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। यही पोल्यूशन का कारण होता है। उसको उसमें बच्चे नहाते हैं, उसमें आपके पशु पानी पीते हैं, तो वहां किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप प्लास्टिक लिए, पानी पिए, आप रोड पे फेंक दिए, आप जो है उसको पानी में फेंक दिए, वो गाय खाया, उसके गला में फंस गया। पोल्यूशन का एक फॉर्म नहीं है, अनलिमिटेड फॉर्म है। आप अपना फैक्ट्री से जो दूषित पानी निकाल रहा है, वो जाके मिल जा रहा है फ्रेश पानी में, वो डिफरेंट प्रकार का डिजीज क्रिएट कर रहा है। उससे जितना तरह का गैस निकल रहा है, वो वातावरण में जाके पोल्यूट कर रहा है। आज दिल्ली में आप देखिए, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, कितना तरह का महामारी बीमारी फैल रहा है। उसका बेसिक रीजन, आई एम श्योर कि आप भी इस बात से एग्री कीजिएगा अर्चना जी, उसका बेसिक रीजन ये है कि हम लोग जो है इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में नाकामयाब है, इसलिए बीमारी का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है। हर आदमी की, हर व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने आसपास का, जैसे अगर हम रहते हैं किसी घर में, तो सबसे पहले अपने मोहल्ले को साफ रखें। मोहल्ला में अगर कोई पानी का स्रोत है, उसको बढ़िया रखें। वहाँ का वातावरण में किसी तरह का गैस का लीकेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का, अगर एग्रीकल्चर से अगर साधन जाना है, तो उनको हम बोलेंगे कि दवा का जो है उस मैक्सिमम ऑर्गेनिक यूज कीजिए, बायो पेस्टिसाइड का यूज कीजिए, बायो फर्टिलाइजर का यूज कीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। मैंने केमिकल्स को रिड्यूस करना है और बायो और ऑर्गेनिक को बढ़ाना है।
1: बढ़ावा
0: ये
1: देना।
0: इससे जो है एग्रीकल्चर का पोल्यूशन कम होगा। अपने में आते हैं तो सरकार का ये दायित्व है कि जो फैक्ट्री का लाइसेंस मिलता है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो के उससे जो इमिशंस हो रहे हैं गैसेस का, वाटर्स का, वो बढ़िया रहेगा, तो आपका वाटर पोल्यूशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। पेड़ पौधा का जो है ज्यादा लगाएंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगा। आज भी हम देखते हैं कहीं पे भी कि मतलब किसी दूर दराज इलाका में अगर एगो पौधा, एगो पेड़ है आम का, इमली का, बरगद का, तो वहाँ कितने अच्छे से 10 आदमी रिसाइड कर जाते हैं। उस समय महत्व पता चलता है कि चिलचिलाती धूप में पौधों का क्या महत्व है। उससे भी आदमी को ये अंदाजा लगाना ना चाहिए कि एसी फेल है।
1: श्रोताओं, 30 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मना रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच शांति व भाईचारा बढ़ाने के लिए इसे वर्ष 2011 में शुरू किया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है देशों, संस्कृतियों और लोगों के बीच शांति की भावना को मजबूत करना। आज पूरी दुनिया एक विश्व ग्राम में सिमट गई है, अतः दुनिया में समरसता बनाए रखने के लिए आपसी मेलजोल और सद्भाव बहुत जरूरी है। श्रोताओं, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस है। यह दिन प्रकृति के रक्षकों, बलिदान और सेवा के 20 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह दिवस दुनिया भर में रेंजरों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले समर्पण और महत्वपूर्ण कार्य को सम्मानित करने का दिन है। प्रकृति संरक्षण में रेंजरों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। संरक्षण और संवर्धन की अग्रिम पंक्ति के रूप में सभी पार्क रेंजर राष्ट्रीय उद्यान प्रणालियों के अभिन्न अंग है। विश्व रेंजर दिवस पार्क रेंजरों के योगदान को मान्यता देने के साथ साथ उनके बलिदानों को भी उजागर करता है। श्रोताओं, अब अंत में चलते चलते 29 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात कर लेते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है बाघों की घटती संख्या को बचाना, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और लोगों में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में रहते हैं, जो देश के जंगलों और पर्यावरण की सेहत का प्रतीक है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा इसे राज्य मंत्रिमंडल की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने भी इसे उपयुक्त माना है।

0: है, आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में।
1: पूर्व डीएफओ कैमूर चंचल प्रकाशम जी।
2: चंचल प्रकाशम जी, कैमूर का वन क्षेत्र बिहार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वन क्षेत्र में बाघ जैसे वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है।
3: जी जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि बाघ जिसको कि इंग्लिश में हम टाइगर कहते हैं और शेर जिसको कि इंग्लिश में हम लोग लायन कहते हैं, तो भारत में जो शेर हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं जिनको कि एशियाटिक लायन कहा जाता है। तो शेर जो है वो भारत में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। हाँ, बाघ जो टाइगर होता है वो सारे जगहों में बिहार में भी पाए जाते हैं, जो हमारे चंपारण के जंगल है वहां भी, कैमूर में भी बाघों का मिलना पाया जाता है, अन्य भी जो राज्य है वहां भी बाघ पाए जाते हैं। तो जो 10 अगस्त को शेर दिवस है तो उसमें शेर को बचाने के लिए, शेर के संरक्षण के लिए हम जो जागरूकता फैलानी होगी उसके लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। शेर विलुप्त हो चुके हैं भारत के अन्य राज्यों में से और सिर्फ एक ही राज्य जो है गुजरात है, वहीं पे शेर बचे हुए हैं। और सरकार की ये पहल भी है कि वहां से हटा करके शेर को कहीं अन्य जगहों, अन्य जंगलों में भी री इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसके लिए कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शेरों को लेकर के आना है। तो पूर्व में तो हमारे कैमूर के जंगलों में भी बाघ और शेर सब पाए जाते होंगे, लेकिन अभी शेर जो है वो यहाँ से विलुप्त हो गए हैं और सिर्फ बाघ ही यहाँ पे रह गए हैं जो भी यदा कदा ही विचरण करने आते हैं।
2: जी चंचल प्रकाशम जी, कैमूर में वनों के साय में कई ऐसे स्थल हैं जहाँ इको टूरिज्म को विकसित किया जा सकता है। करमचट डैम से लेकर माँ मुंडेश्वरी धाम तक सब के सब स्थल दर्शनीय हैं। इको टूरिज्म का कितनी संभावनाएं हैं कैमूर में?
3: बिल्कुल, हमारा जो कैमूर जिला है वो वन संपदा से काफी प्रचुर है और इको टूरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि हम इन्वायरमेंट में लोगों को लेकर के जाते हैं और लोग इन्वायरमेंट का टूरिज्म करते हैं, जंगलों में घूमते हैं, जानवरों को देखते हैं और जंगल और प्रकृति से जुड़ी जो चीजें होती हैं उनका आनंद लेते हैं। तो ऐसे काफी जगह हैं हमारे कैमूर में जहाँ की लोग आ करके और इस तरह की चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि हमारा करकटगढ़ है, करकटगढ़ में काफी अच्छा जलप्रपात है, वाटरफॉल है और उसी के किनारे एक बहुत सुंदर इको पार्क भी बना हुआ है, तो वहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं। वहाँ पे अभी एक क्रोकोडाइल इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने की योजना है, क्योंकि लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो करकटगढ़ वाटरफॉल है, जो कर्मनसा नदी है, उसमें क्रोकोडाइल की संख्या बहुत ज्यादा है, मगरमच्छ की संख्या बहुत ज्यादा है और मगरमच्छ को वहां से संरक्षण किया जा सके, इसके लिए उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए क्रोकोडाइल इंटरप्रिटेशन सेंटर का बनाया जाना है वहां पे है। और इसके अलावे भी मुंडेश्वरी माता का जो मंदिर है वो तो काफी दार्शनिक है ही, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर उसके नीचे एक 5 एकड़ में पार्क की परिकल्पना की गई है जो कि काफी, जिसमें कि बच्चों को खेलने से लेकर के और जानकारी जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में उसमें जानकारी दी जाएगी। तो एक मुंडेश्वरी माता के पास इको पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। एक यहाँ पे बहुत सुंदर और एक जलप्रपात है जो कि तेलहार कुंड, काफी लोग इससे इस जानकारी को रखते होंगे, तेलहार कुंड के पास जो वाटरफॉल है वहां की काफी चीजों का निर्माण कराया जा रहा है जिससे कि जो पर्यटक वहां पे जाए उनको कोई असुविधा ना हो। करमचट डैम एक हमारा है जो कि 18 एकड़ में फैला हुआ डैम है, जो रिजर्वायर है, वहां पे पानी जमा रहता था तो वहां पे बोटिंग स्टार्ट किया जा रहा है जिससे कि पर्यटक जो है बोट पे बैठ करके पूरे डैम में घूम सकते हैं और पहाड़ों के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को एंजॉय कर सकते हैं। और करमचट डैम के दूसरी तरफ एक और इको पार्क का निर्माण कराया जा रहा है जिससे कि लोग प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावे भी हम लोग जंगल में डिफरेंट ट्रेकिंग ट्रायल्स, कैंपिंग साइट, ये सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि लोग पैदल जंगल में चलते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं और या पहाड़ों पे जा करके कैंप में रहने का जो आनंद होता है वो लेते हैं। ये सारी चीजें हम लोग कैमूर में इस बार शुरू करने वाले हैं।
2: डीएफओ महोदय, अब अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि कैमूर में वन्य प्राणियों की आश्रय या अभयारण्य के रूप में विकसित करने के लिए

0: कुछ किया जाना बाकी है?
1: देखिए, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पहले से डिक्लेयर्ड है, कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य बहुत पहले से है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ समय में कैमरा ट्रैप में बाघ के फोटो भी आए हैं, तो इससे ये पता लग रहा है कि बाघ भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जानवर है, बहुत महत्वपूर्ण जो जानवर है, जैसे बाघ हो गया, लेपर्ड हो गया, बोर हो गया, स्लोथ बेयर हो गया, चीतल हो गया, हाइना हो गया, जैताल हो गया, ये सारे जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स है वो हमारे जंगल में पहले से मौजूद हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये विचार किया है कि इसको एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं।
0: जी
1: तो बिहार में, अगर आपको पता होगा, तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में का एक जो पोर्शन जहाँ पे कि बाघों का आना जाना लगा रहता है, उसको एक हम टाइगर रिजर्व, कैमूर टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसको हम लोग डेवलप करें। तो आने वाले दिनों में हम इसे टाइगर रिजर्व बनने की और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के जा रहे हैं।
0: जी चंचल प्रकाशम जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

श्रोताओं, बारिश की बूंदें जब पौधों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो जीती जागती जिंदगी हिलोरे ले रही हों और प्रकृति श्रृंगार कर रही हों। बरसात के साथ साथ कलियों में निखार आना प्राकृतिक सुषमा में चार चांद लगाता है, कितना अच्छा हो। हमारे बाग हमेशा ही मुस्कुराते रहें।

0: सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: श्रोताओं, आपको यह अंक कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा।

0: फिलहाल अर्चना लेती है विदा। नमस्कार, स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किड बैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
2: चले
3: ले आ गया नया किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब आइए सुनते हैं रीना सिन्हा की आवाज़ में एक बेहतरीन भोजपुरी लोकगीत।

रीना सिन्हा की आवाज़ में अभी आपने सुना भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 होने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

प्रणाम, यह आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रघु आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 136वां कड़ी में आज कहले बाड़न कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग आ मित्र देश के मामला में लगातार नया ऊंचाई छू रहल बा। भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहल बा। श्री मोदी कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानन के याद करत कहले कि ये दिन देशवासी के अपना बहादुर सैनिकन के असाधारण शौर्य के याद दिलावेला आ हर भारतीय के गर्व से भर देवेला। उ मातृभूमि के रक्षा में अपना प्राण के आहुति देवे वाला जवानन के श्रद्धांजलि देहला के साथे देशवासी से अपील कैले कि उ लोग एगो सुरक्षित सक्षम आ आत्मनिर्भर भारत बनावे के संकल्प लेवे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कहले कि कैच द रैन अभियान 4 जुलाई से पूरा देश में चलावल जा रहल बा। यही के तहत बरसात के पानी से जोए भू जल पुनर्भरण आ पोखरा तथा बगीचा सबके जीर्णोद्वार के नया गति मिल रहल बा। श्री मोदी ई अभियान में गांव आ शहर के लेके पंचायत आ सामाजिक संगठन सबके जबरदस्त भागीदारी पर खुशी जतौले। प्रधानमंत्री प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता जतौले। उ कहले कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरा प्रकृति खातिर नुकसानदेह बनल बा। उ प्लास्टिक के सही तरीका से निस्तारण करे पर जोर दिहले। श्री मोदी बिहार के सीतामढ़ी में कचरा से कंचन के एगो उदाहरण दिहले जहां कचरा के दोबारा इस्तेमाल करके सुंदर बेंच बनावल जा रहल बा। प्रधानमंत्री 7 अगस्त के पूरा देश में मनावे जाए वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के जिक्र करत कहले कि ई दिन देश के बुनकर सबके हुनर आ रचनात्मकता के सम्मान के प्रतीक है। श्री मोदी कहले कि देश में जौना तरह से हथकरघा उद्योग के बढ़ावा दिहल जा रहल बा ओकरा से भारी संख्या में लोगन के

0: जिंदगी में सुधारा होता। पोचमपल्ली से लेके पटना तक आ कुथमपल्ली से लेके कच्छ तक एकर कई गो उदाहरण बा। प्रधानमंत्री खादी के जिक्र करत कहले कि पिछला 12 साल में खादी के बिक्री में 6 गुना बढ़ोतरी भइल बा। श्री मोदी लोगन से आवे वाला पर्व त्योहार के मौसम में खादी हथकरघा आ हस्तशिल्प से बनल कम से कम एगो सामान खरीदे के अपील कैले। प्रधानमंत्री कहले कि स्वतंत्रता दिवस अनगिनत के नायक के सबके याद करे के दिन होला जे आजादी खातिर अपन सब कुछ लुटा देहले। वो कहले कि पिछला कुछ साल में हर घर तिरंगा अभियान देश के एक सूत्र में बनले बा आ इस साल भी ओकरा के पूरा उत्साह से आगे बढ़ावे के हुई। उस सब के उसे एक बार फेन 15 अगस्त से पहले माय गॉव पोर्टल पर अपन विचार आ सुझाव साझा करे के आग्रह कैले। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण कैले। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देहला के बाद काल्हे श्री जोशी के एह पद पर नियुक्ति भइल रहे। उपभोक्ता मामला, खाद आ सार्वजनिक वितरण, नवीन आ नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सबके प्रभार भी संभाले रखी हैं। पदभार ग्रहण कैला के बाद उ अलग अलग योजना और प्रमुख पहल के लागू करे के आकलन करे खातिर शिक्षा मंत्रालय के समीक्षा बैठक के अध्यक्षता कैलन। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी आ मंत्रालय के कई गो वरिष्ठ नेता ए बैठक में मौजूद रहे। लोग बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लेके अलग अलग दल के प्रत्याशी सबके चुनाव प्रचार जोर पकड़ लेबा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी सांसद मनोज तिवारी भोजपुरी, अभिनेता विधान पार्षद पवन सिंह आज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाका में पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में प्रचार कैले। वही जहाँ NDA के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपचुनाव में जीत के दावा कैल गई बा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद कहले कि NDA उम्मीदवार के भारी अंतर से जीत हुई। राज्य के अलग अलग हिस्सा में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रियता में कमी आयल बा। यही से पिछला 24 घंटा के दौरान अलग अलग जगह पर बहुत कम पानी पड़ल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक जहानाबाद में सबसे ज्यादा 4.5 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कैल गई बा। वही जा राज्य के ज्यादातर हिस्सा में मौसम सूखा रहल बा। मौसम विभाग अपना पूर्वानुमान में कहले बा कि काल के बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय होखे के संभावना बा। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा में सिरसिया नौरंगिया थाना क्षेत्र में एगो गांव में मगरमच्छ एगो मेहरारू पर हमला कर दहलस। ए मामला में उ गंभीर रूप से घायल हो गयी। भोजपुर जिला के बरहारा प्रखंड अंतर्गत बखोरापुर पंचायत में पंचायत विकास दिवस के आयोजन कैल गई। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में भारी संख्या में जनप्रतिनिधि आ आम लोग हिस्सा ले रहे। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: भोजपुरी समाचार बुलेटिन अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम। श्रोता भाई बहन, देखें बरसात के दिन बा और ए घड़ी भी गांव में पानी निखे। बरसात होता ओकर ठहराव के कोई जगह निखे। पानी खेत से पकड़ के नदी में, नदी से समुद्र में चल जाता। लेकिन कोई भी गांव में ओकर अस्थायित्व खातिर, ओकरा के ठहराव खातिर कौनो ऐसन जगह निखे बचल जौन ताल पोखर, जौन हमनी के समृद्ध जल संचयन के व्यवस्था रहे, ओकरा के ध्वस्त हो गए। तमाम प्रयास के बाद भी अभी तक कई गांवन में ताल पोखर पर जौन घर मकान बना के लोग रह रहल बा, वो अतिक्रमण मुक्त ना भइल। ओकर इतना परिणाम, जौन गंभीर परिणाम आ रहल बा कि

पानी के लेयर जौन बा स्तर बा काफ़ी नीचे जा रहल बा। अगर 15-20 दिन पानी नीखे होखत तो गांव में मोटर पंप भी सिवान में नीखे चल पावत। लगातार मोटर पंप चले से गांव के चापाकल समरसेबुल बोरिंग जोन भी बा तौन सूख जाता। कहीं ना कहीं हमनी के जौन पारिस्थितिकी तंत्र रहे जौन इकोलॉजी सिस्टम रहे वो ध्वस्त हो रहल बा। पहले हर गांव में आर्द्र भूमि रहत रहे ऐसन जगह गढ़ी ताल छोड़ल जात रहे जौन की आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित रहे। और ये दुनिया भर के ही समस्या बा कि हमनी के पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षित नहीं जा रख पावत। अगर सुरक्षित रखल जाए तो एकर जौन असर पड़ी जौन एकर जौन प्रभाव पड़ी वो आवे वाला पीढ़ी पर भी पड़ी। आज दुनिया भर में सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण खातिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। यह दिवस के हमनी के माइग्रो मनो के पुनर्स्थापित करे में मदद के भी दिवस के रूप में जाने नहीं जा। एकरा के माइग्रो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण खातिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूनेस्को द्वारा घोषित कल गए रहे। श्रोता भाई बहन लगातार जोन आर्द्र भूमि के कम होखे के समस्या आ रहल बा एकर कहीं ना कहीं हमनी के जिम्मेदार बनी जा। आज देखी ताल पोखर खत्म हो गई तो एकरा से खाली पानी के समस्या ना दूर भइल। पानी के खाली समस्या हमनी के निखे बढ़ल बल्कि कई तरह के जीव जंतुअन के हमनी के लुप्त कर देने जा। जौन ताल रहे जौना में कि मछली के भी शरण स्थली रहे उमें मेढक कछुआ कई तरह के जीव जंतु शरण ले ले रहन वो नष्ट हो गेलन। जौन चिड़िया जीव जंतु जितना भी लोग रहे जौना में भी जीव के ही रहे ओकरा के भी पानी के जौन पिए के व्यवस्था ताले पोखर के माध्यम से होत रहे। एकरा के जब नष्ट के नहीं जाता हमनी के जलीय जीव के साथ साथ कई जीवन के भी खत्म कर देने जा। कई पशु पक्षियन के जौन चहचहात जौन चिड़िया रही सन वो खत्म हो गई सन पानी के अभाव में। एकरा अलावा हमनी के एक ऐसन व्यवस्था कायम की नहीं जा कि धीरे धीरे 20 फीट के पानी 30 फीट 40 फीट 50 फीट पर जाते आज 100-200-300 मीटर नीचे जाके उकर दोहन करे के व्यवस्था में लगनी जा। और कई गांवन में जोना के चलते अकाल भी पड़े के संभावना से इनकार ना कर जा सके। काहे से को जब पानी ख़त्म भइल जाता गर्मी में हाहाकार मच जाता आदमी से लेके जानवर तक उतार के लावल जातन कि भाई चलो अब यही जा कोनो पानी पिए के व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन टैंकर से व्यवस्था कर रहल बा तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा हमनी के स्वार्थ बहुत बड़ा खतरा के संदेश दे रहल बा। देखी जौन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण खातिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मनावल जा रहल बा सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण खातिर भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस एकरा के कहल जाला। एकरा में मैंग्रोव वन भूमि जौन है और समुद्र के बीच बहुत ही सुंदर पारिस्थितिकी तंत्र है। ये जैव विविधता के सहारा देवे खातिर रहे और तटीय समुदाय के रक्षा करत रहे खाद्य सुरक्षा के भी बढ़ावा मिलत रहे और तूफान से कटाव के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा कवच के काम करत रहे। एकर जौन मिट्टी रहे वो कार्बन के अवशोषित करे में भी सक्षम रहे। लेकिन वैश्विक वन के कुल क्षय के तुलना में मैंग्रोव 3-5 गुना अधिक तेजी से लुप्त होके लागल जौना के गंभीर पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़े लागल। एक अनुमान के अनुसार पिछला 40 वर्ष में मैंग्रोव के क्षेत्रफल आधा हो गई। यूनेस्को जौन बा 2015 में मैंग्रोव के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ावे खातिर और ओकर सतत संरक्षण खातिर बढ़ावा देवे के काम शुरू कल और 26 जुलाई के एकरा के मैंग्रोव के संरक्षण खातिर समर्थन करे खातिर दिवस घोषित कल गई जौन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जानल गई। श्रोता भाई बहन

जलवायु परिवर्तन से निपटे खातिर ब्लू कार्बन परिषद के जोना में कि मैंग्रोव समुद्री घास ज्वारी ये खारा पानी के दलदल के रक्षा और प्रबंधन के पुनर्स्थापन खातिर प्रतिबद्ध जो स्वस्थ ब्लू कार्बन बा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री जीव के आवास प्रदान करेला मछली के भंडार और खाद्य के सुरक्षा के बढ़ावा देला तटीय समुदाय और उनका आजीविका के बनावे रखेला हमनी के महासागर के प्रवाल भित्ति में बहे वाला पानी के छाने खातिर और तटीय रेखा के कटाव और तूफानी लहर से भी बचावेला यूनेस्को लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में जीव मंडल अभ्यारण्य में मैंग्रोव के पुनर्स्थापन और संरक्षण में समुदाय के समर्थन कल जा रहल बा और एकरा के वन के पुनर्स्थापित करे में ई मदद करेला श्रोता भाई बहन आज हमनी के कैमूर पहाड़ी के क्षेत्र में भी बहुत सा जंगल धीरे धीरे नष्ट होके लागल हमनी के लाखों लाख पौधा प्रतिवर्ष लगावत निजा लेकिन जौन हरित क्षेत्र बा वो अनुपात में बढ़ निखे पावत जितना आर्द्र भूमि रहे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहल बा जौना से कि जलीय जीव जौन बाणन वो नष्ट होके के कगार पर बाणन अगर हमनी के ओकरा के संरक्षण नहीं खींचा करत ओकरा के बचावे के संकल्प नहीं खींचा ले तो बहुत बड़ पारिस्थितिकी खतरा आई। देखी यूनेस्को जोन है तो स्थानीय स्वदेशी समुदाय के साथ मिलके विज्ञान पर आधारित समाधान के उपयोग करके मानव के परिवर्तन के अनुकूल होके में मदद करेला जलवायु परिवर्तन के कम करे में भूमिका भी निभावेला तो हमनी के चाहिए कि जितना जलीय जीव बाड़न जलीय पौधा बाड़न ओकर संरक्षण करे खातिर ओकरा के कैसे संरक्षित कल जाए यह पर हमनी के संकल्प लेवे के चाहिए और पारिस्थितिकी तंत्र बचावे खातिर ओकरा के सुरक्षित रखे खातिर हमनी के चाहिए कि आगे बढ़ के काम कल जाओ थोड़ा सा स्वार्थ खत्म कल जाओ और फिर से हमनी के अगर जल के संरक्षित कर तनी जा पर्यावरण के संरक्षित कर तनी जा तो जीवन बहुत खुशहाली से बीती काहे से कि आज हमनी के पानी खरीद के और सांस जोन बा हवा जोन बा तो ना के भी खरीद के ले रहल बनी जा बोतल बंद पानी नुकसानदायक के साथ साथ मजबूरी में लोग ले रहल बा काहे से कि पानी कई गांवन में धीरे धीरे ख़त्म हो रहल बा हमनी के पृथ्वी के दोहन करके ओकरा के निकालत नहीं जा तो यह से हमनी के चाहिए कि जलस्तर के बढ़ावे खातिर कुआं तालाब पोखरा ये सब के संरक्षित कर जाओ फिर से बचावल जाओ और ओकरा के अगर बचावल जाए अधिक से अधिक ओकरा के निर्माण करावल जाए जीर्णोद्धार करावल जाए तो हमनी के कई तरह के जलीय जीवन के भी बचा जान बचावल जा सकेला जौन लुप्त तो हो रहल बाणन जौन लुप्त तो होके के कगार पर बाणन उनका के जीवन दान मिले। श्रोता भाई बहन आई चर्चा के बाद अब हमनी के सुनल जाओ ये वो बरसाती गीत आज के कलाकार बानी मंदाकिनी सिंह और गीत के बोल रही बरस गए बदरा पिया घर नहीं आए।

0: बड़ा निमन गीत सुनौनी हाँ मंदाकिनी सिंह जी। ये बरसाती गीत रहा कि बरस गए बदरा पिया घर नहीं। श्रोता भाई बहन, हाई कार्यक्रम में आगे बढ़े से पहले एक संदेश बात सुन लिहल जाओ।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता और सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल और सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय और देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइल आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
0: श्रोता भाई बहन, अभी हमने का सुनत रहनी है जा वो संदेश। देखें जो जौन भी गर्भवती महिला लोग बा, अगर उनका के पोषित भोजन ना दिहल जाए तो उनका स्वास्थ्य पर असर पड़बे करी, साथ साथ जौन पेट में बच्चा पल रहल बा वो भी कुपोषित होई। गर्भवती महिला के पोषण आहार कैसन होके के चाहिए, उनका के का करे के चाहिए, का ना करे के चाहिए, कौन सा भोजन लेवे के चाहिए, कोना से परहेज बरते के चाहिए, आई यह विषय पर हमने के एगो वार्ता सुनल जाओ। आज के वार्ताकार बानी वैष्णवी भारद्वाज जी, आई सुनल जाओ गर्भवती महिला।

0: माताओं का पोषण आहार।
1: हर महिला के जीवन में गर्भावस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण होता है। इस समय महिला के शरीर को न केवल अपने लिए बल्कि अपने गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए भी विशेष देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। आज की इस वार्ता में हम जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार का पोषण लेना चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं और किन चीजों से बचना चाहिए। श्रोताओं, गर्भावस्था के दौरान एक महिला के शरीर में बहुत से शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। गर्भस्थ शिशु का विकास पूरी तरह उस महिला के पोषण पर निर्भर करता है। यदि इस समय महिला का आहार संतुलित और पोषक नहीं है तो न केवल माँ बल्कि बच्चा भी अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकता है। कमजोर पोषण के कारण जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है, गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है और प्रसव के समय जटिलता हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व क्या हैं? आइए हम जानते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है। गर्भावस्था में यह शिशु के उत्कों, मांसपेशियों और अंगों के विकास के लिए जरूरी है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन, सोया, ये सभी है। आयरन। शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन अत्यंत आवश्यक है। गर्भवती महिला को अनीमिया से बचने और बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आयरन जरूरी है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है गुड़, अनार, चना, किशमिश, आयरन की टैबलेट्स जो कि डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। फॉलिक एसिड, यह बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद करता है। इसकी कमी से जन्म दोष हो सकता है, जिसका मुख्य स्रोत है पालक, अंकुरित अनाज, संतरा, फॉलिक एसिड की गोलियां, यह भी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। कैल्शियम, यह बच्चे की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी है, माँ की हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखता है, जिसका मुख्य स्रोत है दही, पनीर, तिल, सोया मिल्क, हरी सब्जियां। विटामिन डी, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन डी। सूरज की रोशनी इसका मुख्य स्रोत है, इसीलिए माँ को सुबह कुछ देर तक सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए। फाइबर, कब्ज की समस्या से बचाने में मदद करता है, जिसका मुख्य स्रोत है फल, सब्जियां, रेशेदार फल और सब्जियां। पानी, शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी माँ को पीना बेहद अत्यंत आवश्यक है। अब हम यह जानेंगे कि भोजन की योजना कैसे बनाएं। एक गर्भवती महिला के लिए भोजन की योजना बनाते समय हम किन चीजों का ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके संतुलित भोजन करना चाहिए। भोजन में विविधता होनी चाहिए, जैसे नाश्ते में दूध या दही, अंडा, दलिया, फल। दोपहर का भोजन जिसमें चपाती यानी कि रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, छाछ, अगर महिलाएं इनका सेवन करती हैं तो उनका और उनके बच्चे का स्वास्थ्य काफी सही होगा। शाम का नाश्ता जिसमें गर्भवती महिलाएं फल, सूखे मेवे, अंकुरित अनाज का सेवन कर सकती हैं। रात का भोजन जो काफी हल्का लें, जिसमें रोटी, सब्जी और दाल होनी चाहिए। सोने से पहले अगर गर्भवती महिलाएं 1 ग्लास दूध का सेवन करती हैं तो उससे उनका सेहत और होने वाले बच्चे का सेहत बेहद सही होगा। किन चीजों से बचना चाहिए, एक गर्भवती महिला को किन चीजों का परहेज करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, अब आइए हम वह जानते हैं। जो है बाहर का तला भुना खाना, एक गर्भवती महिला पे ना केवल खुद के स्वास्थ्य निर्भर करता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी उस पे निर्भर करता है, इसीलिए बाहर का तला भुना खाना एक गर्भवती महिला को नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक कैफीन जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का सेवन ना करें। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। अधिक नमक और चीनी का सेवन ना करें। बिना डॉक्टर की सलाह की दवाइयां नहीं खानी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ दवाइयों की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य काफी नाजुक हो जाता है, उससे कई बार वह मर भी सकता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकारी योजनाओं और सहायता, आइए अब हम जानते हैं कि आखिर सरकार गर्भवती महिला लिए किन योजनाओं पे काम कर रही है और उससे उन्हें क्या लाभ हो सकता है। भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर फ्री पोषक आहार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इससे वित्तीय सहायता मिलती है, जननी सुरक्षा योजना, इससे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए यह योजना काम करती है।

0: जिसका मुख्य कारण यही है कि गर्भवती महिला का जो प्रसव है वो घर में या किसी ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे टेक्निकल लोग ना हो, जहाँ डॉक्टर ना हो, और ऐसी जगह पर हो जैसे कि हॉस्पिटल में हो, ऐसी संस्थाओं में हो जहाँ उसकी प्रसव को काफी अच्छे तरीके से करवाया जा सके। निःशुल्क टीकाकरण और जाँचें, इन योजनाओं का लाभ जरूर लें और आसपास की महिलाओं को भी इसके लिए जागरूक करें। गर्भवती महिला का सही पोषण केवल उसके और उसके बच्चे के स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों की नींव है। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चा जन्म दे सकती है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने घरों, मोहल्लों और गांव में गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधित जानकारी देंगे और उन्हें सही आहार लेने के लिए प्रेरित करेंगे।
1: बढ़िया जानकारी देनी है वैष्णवी भारद्वाज जी की, गर्भवती महिला के पोषण आहार का होके चाहिए, कौन सा विटामिन उनका लेवे के चाहिए, कौन सा पोषक तत्व तो लेवे के चाहिए, दूध का लेवे के चाहिए, पनीर लेवे के चाहिए। और देखिए श्रोता भाई बहन, हमनी के आसपास के चीज़ जोन पहले आदमी मोट अनाज खात रहे वगैरह में भरपूर रहत रहे पोषण तत्व, अपना आसपास के पेड़ पौधा सब्जी में भी इतना अधिक रहे जो उनके डब्बा बंद और प्रोसेस जो आवता फूड वगैरह में नहीं खे। जब भी खाई ताज़ा खाई, शुद्ध खाई और मोटा अनाज खाई, ताकि वो जो पूरा पोषण से भरपूर रहे। और खासकर गर्भवती महिला के हमने के विशेष ध्यान देवे के चाहिए, चूँकि वो दुजीवा बाड़ी अपना समय में, उनका अंदर भी एक जीव बा, तो एक जीव के और रक्षा करे के बाद उनकर भोजन के माध्यम से जो उनका पेट में पल रहा बा, तो एक तरह से हमनी के उनका प्रति संवेदनशीलता बरत के उनकर भोजन के व्यवस्था देखे के चाहिए। श्रोता भाई बहन, आज देखें कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल विजय दिवस जोन है तो आजे के दिन हमनी के जोन देश में 1999 में कारगिल के युद्ध भई रहे, और ये युद्ध जोन बा भारत पाकिस्तान के बीच रहे। कारगिल जगह पर युद्ध भई, कारगिल के पहाड़ी पर जो उनके जम्मू कश्मीर में बा, वही जा युद्ध 60 दिन तक चला, और 60 दिन में चलला के बाद में कई जवान यह बीच में अपन प्राण के आहुति भी देलन, लेकिन भारतीय सेना डटल रहल और माकूल जवाब देत चल गई। जाके कारगिल के चोटी पर जाके भारतीय पताका फहरल, और 26 जुलाई के दिन 1999 में युद्ध पर विराम लागल, जो नाम है कि भारत के विजय भई रहे। यह विजय के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनावल जाला, और आज दुनिया भर खातिर, आज हमनी के देश खातिर बहुत गौरव के बात बा कि हमनी के भारतीय सेना अपन पराक्रम से देखा दिलत कि वो कोई से कमज़ोर नहीं है, बल्कि अपना देश के सीमा के सरहद खातिर वो कोई भी स्तर पर जाके और अपन पराक्रम और शौर्य दिखाई। आज के दिन यह कारगिल युद्ध के दौरान जो हमने के भारतीय सैनिक शहीद भई रहन, उनका के सम्मान देवे खातिर भी मनावल जाला, उनकर परिवार के साथ खड़ा होके खातिर भी मनावल जाला। श्रोता भाई बहन, आज हर भारतीय के ये गर्व करे वाला दिन बा कि आज के दिन भारत जोन बा तो उन पाकिस्तान से विजय प्राप्त करके और कारगिल में भारतीय पताका तिरंगा के राष्ट्रीय ध्वज के लहरौले रहे, राष्ट्रीय ध्वज वही पर आके ये साबित कैलस कि भारत जोन बा तो आपन सीमा के रक्षा करे खातिर भारतीय सेना पूर्ण रूप से सक्षम बा। इसमें कोई के बिचौलिया के, कोई के भी बाहरी तत्व के एकरा में कोई हस्तक्षेप ना बर्दाश्त करी, वो अपन सुरक्षा वो खुद करे में इतना सक्षम बा। तो आज के दिन बहुत ही ऐतिहासिक भी बा। आज के दिन हमनी के भारतीय सैनिक के सम्मान करे के दिन बा, जेकरा चलते आज असंख्य करोड़ों करोड़ भारतीय

असुरक्षित बाण, उनका देश सुरक्षित बा, भारत सुरक्षित बा। आज हमनी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई के कोई भी तत्व के इतना निखे को आँख दिखा देवे। आज वो हमनी के वीर सैनिक के जो हमनी के देश के सेना के लोग बा, जो अधिकारी बाणन, सैनिक बाणन, उनकर पराक्रम, उनकर परिश्रम और सशक्त राष्ट्र के कारण ये संभव हो पावल बा। श्रोता भाई बहन, अब चलत चलत एगो आज के हमनी के मौसम के पूर्वानुमान पर भी नज़र डालल जा। आज अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रहला 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता रहला 40%। आज अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड कैल गेल बा तौन 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कैल गेल बा। चेतावनी बाकी आंधी और बिजली के संभावना बा, तूफान आवे के संभावना बा। हमनी के सुरक्षित स्थान पर रहे के चाहिए। अगर तेज आंधी आवे, बिजली कड़के, तो भूल करके भी पेड़ के नीचे ना खड़ा होके के चाहिए या ऐसा कोनो असुरक्षित जगह पर ना शरण लेवे के चाहिए जहाँ पर कि बिजली गिरे के डर रहे। श्रोता भाई बहन, आसमान में घना बादल भी छौले रही, गरज चमक के साथ तेज पानी भी बहे के संभावना बा, तेज पानी होके के संभावना बा और 10 से 15 किलोमीटर के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के अनुमान बा। यह से सुझाव बा, चेतावनी बा कि अगर अनावश्यक रूप से जब तेज बादल घेरले होके तेज हवा चले लागे तो बाहर मत निकली, कहे से कि मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के भी संभावना जतावल गई बा। श्रोता भाई बहन, अब कार्यक्रम के समय उड़ा रहल बा, कार्यक्रम संपन्न करे के अनुमति दी हैं। सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हो चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद। कुछ बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है सांझ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ों में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन के और फिल्म का नाम है नदिया के पार।

भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं अभी आपने सुना फिल्म नदिया के पार से, जिसे गाया था जसपाल सिंह और हेमलता ने। गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है कल्पना पटवारी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बलमा बड़ा नादान। इसे संगीत से सजाया है सुजीत कुमार ने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: संगीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम पेशकश है उषा मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गंगा किनारे मोरा गांव। शब्द लक्ष्मण शाहबादी के हैं और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

उषा मंगेशकर द्वारा गाए इसी भोजपुरी गीत के साथ भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
1: नमस्कार, ममता का आंचल। ममता का आंचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश। ये रेडियो प्रोग्राम जहां हम मां बनने के सफर की हर उलझन, हर सवाल और हर उम्मीद पर खुलकर बात करते हैं। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि कल यानी 25 जुलाई को पूरी दुनिया ने वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया है और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह पटना की जानी मानी फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चिखैयार। और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी की तरफ से, जो कि भिकना पहाड़ी मोड़ पटना में है। डॉक्टर श्रद्धा को बुलाएं, स्वागत करें। उससे पहले डॉक्टर श्रद्धा का नंबर आप सबों को बताते हैं। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266 9162562266। यही वो नंबर है जिस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। हम बार बार कहते हैं, वैसे माता पिता जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, अब संकोच नहीं करना है, संकोच नहीं करना है, इलाज कराना है, हाँ चुप्पी तोड़ना है, हाँ ये चाहत दिल में रखनी है कि उन्हें कोई ऐसी भयंकर बीमारी नहीं है, एक छोटी सी बीमारी है जिसका समाधान हो जाएगा और बच्चे उनके घर में भी किलकारियां लेंगे। बहरहाल चलिए, डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ बैठी हैं और डॉक्टर श्रद्धा को हम इस कार्यक्रम में बुलाते हैं क्योंकि ढेर सारे सवाल है जो आज हमको उनसे पूछने हैं। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस ममता का आंचल कार्यक्रम में। डॉक्टर श्रद्धा, पहला सबसे सीधा सवाल कि आईवीएफ डे आखिरकार 25 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है?
2: बहुत सुंदर सवाल। 25 जुलाई 1978 इसी दिन इंग्लैंड में दुनिया की पहली आईवीएफ बच्ची का जन्म हुआ था, लुईस ब्राउन। उनके माता पिता 9 साल से संतान की कोशिश कर रहे थे। 9 साल, सोचिए उस दौर में उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तब डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स और डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो ने विज्ञान से वो दरवाजा खोला जो

0: कुदरत ने उस दंपति के लिए बंद कर रखा था और इसी खोज के लिए डॉक्टर एडवर्ड्स को आगे चलकर नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो हम ये दिन इसलिए मनाते हैं ताकि हर उस दंपति तक ये संदेश पहुंचे जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं, जो थक चुके हैं, जो चुपचाप आंसू पी रहे हैं कि रास्ता है, उम्मीद है। ये दिन विज्ञान का उत्सव है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है उम्मीद का जन्मदिन।
1: उम्मीद का जन्मदिन, वाह, कितनी बड़ी और सकारात्मक बात कही डॉक्टर श्रद्धा आपने, बहुत अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद का दामन हमेशा पकड़े रहना चाहिए। और वैसी स्थिति में जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, विज्ञान ने बहुत सारी ना को हाँ में बदल दिया है, वैसे में आपके लिए भी विज्ञान सहायक हो सकता है, हम तो बस यही कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर श्रद्धा, ये तो हुई इंग्लैंड की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत भी इस कहानी में बहुत पीछे नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं था, और ये बात हर भारतीय को गर्व से जाननी चाहिए। लुईस ब्राउन के जन्म के सिर्फ 67 दिन बाद 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में भारत की पहली IVF बच्ची का जन्म हुआ, नाम था दुर्गा। ये कमाल किया था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने, बहुत सीमित संसाधनों में, लगभग अकेले। लेकिन दुख की बात ये है, उस समय समाज और व्यवस्था ने उनके काम को नहीं समझा, उन्हें मान्यता नहीं मिली। बरसों बाद दुनिया ने माना कि वो भारत के IVF के जनक थे। और दुर्गा यानी कानुप्रिया अग्रवाल आज एक सामान्य स्वस्थ जीवन जी रही हैं। ये कहानी हमें दो चीजें सिखाती है, पहली विज्ञान पर भरोसा रखिए, और दूसरी समाज की सोच बदलने में वक्त लगता है लेकिन सच आखिरकार जीतता है।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ममता का आंचल। वैसे दंपतियों के लिए जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं होना एक सिर्फ बीमारी होती है, आप विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए, जरूर रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये कार्यक्रम हम श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से लेकर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ का नंबर हम बता रहे हैं, डॉक्टर श्रद्धा का नोट कीजिए, फिर अगला सवाल हम डॉक्टर श्रद्धा से पूछेंगे। नंबर है 9162562266, 9162562266। और अब डॉक्टर, आपने कहा कि ये दिन उम्मीद का है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में, आस पड़ोस में आज भी संतान न होने पर सारा दोष महिलाओं पर डाल दिया जाता है, ताने सुनने पड़ते हैं, ऐसे में ये दिन उस परिवार के लिए क्या मायने रखता है?
0: यही तो सबसे जरूरी बात है। मैं अपने क्लिनिक में रोज ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जो इलाज से पहले अपने आंसू लेकर आती हैं। कोई कहती है सास ताना देती है, कोई कहती है लोग पूछते हैं खुशखबरी कब। मैं आज इस मंच से साफ कहना चाहती हूँ, संतान न होना कोई पाप नहीं है, कोई कलंक नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डायबिटीज या थायराइड, और हर मेडिकल कंडीशन की तरह इसकी जांच होती है, इलाज होता है। और एक बात, निसंतानता में लगभग बराबर हिस्सा पुरुष कारणों का भी होता है, इसलिए जांच हमेशा पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए। IVF डे का असली संदेश यही है, छुपिए मत, डरिए मत, खुद को दोष मत दीजिए, हिम्मत करके एक बार सही डॉक्टर से मिलिए।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर श्रद्धा आपने, दोष देने की जरूरत नहीं है, किसी पर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। पत्नी कहें पति को, पति कहें पत्नी को, घर वाले कहें अपने बहू को, ये अच्छी बात नहीं है। ये बच्चा ना होना ना तो अभिशाप है और ना ही बहुत बड़ी समस्या है। हम तो कहेंगे ना कि विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए, जाके बातचीत कीजिए, जांच होगी। ये महज एक बीमारी है जो हो सकता है दवा से ही ठीक हो जाए, और अगर ना हो पाए तो फिर IVF पद्धति है ना, हाँ उसका सहारा ले लीजिए ना, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, उसका सहारा ले लीजिए। हाँ, और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर एक सवाल जो हमें बहुत से श्रोता भेजते हैं, क्या IVF से जन्मा बच्चा सामान्य बच्चों जैसा ही होता है, कोई कमजोरी तो नहीं होती?
0: इसका जवाब खुद लुईस ब्राउन

0: जिंदगी है। दुनिया की पहली IVF बच्ची आज एक स्वस्थ महिला है और सुनिए वो खुद प्राकृतिक रूप से माँ बनी बिना किसी इलाज के। और ये सिर्फ विदेश की बात नहीं है, अपने देश की मिसालें देखिए। हमारी दुर्गा यानी कानुप्रिया अग्रवाल आज एक पढ़ी लिखी स्वस्थ प्रोफेशनल महिला है और मुंबई की हर्षा चावड़ा जो 1986 में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा की टीम की मदद से जन्मी भारत की पहली आधिकारिक रूप से प्रमाणित टेस्ट ट्यूब बेबी थी, वो खुद 2016 में माँ बनी और वो भी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बिना किसी इलाज के। सोचिए कल की टेस्ट ट्यूब बेबी आज खुद एक स्वस्थ बच्चे की माँ है। आज तक दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे IVF से जन्म ले चुके हैं। वो स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और माता पिता भी बनते हैं। IVF में हम बस अंडाणु और शुक्राणु के मिलन में विज्ञान की मदद लेते हैं, बाकी सब गर्भ जन्म ममता सब कुछ उतना ही प्राकृतिक है। टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से घबराइए मत, बच्चा टेस्ट ट्यूब में नहीं माँ की कोख में ही पलता है।
1: अभी आप सुन रहे हैं ममता का आंचल। जी हाँ, ये रेडियो कार्यक्रम IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान और सरल है, सक्सेस रेट भी अच्छा है। अगर वैसे दंपत्ति जिनके शादी के 2-3-4-5 साल हो गए हैं, आप इसका सहारा ले सकते हैं। और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी भिखना पहाड़ी मोड़ पटना 4 की तरफ से ये जानकारियां पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, सलाह चाहिए तो नोट कीजिए डॉक्टर श्रद्धा का नंबर। नंबर है 9162562266। और अब अगला सवाल, डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, श्रोताओं में से किन लोगों को फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलने के बारे में सोचना चाहिए?
0: एक आसान नियम याद रखिए, अगर पति पत्नी 1 साल से बिना किसी रोक टोक के प्रयास कर रहे हैं और गर्भ नहीं ठहर रहा तो जांच करवानी चाहिए। अगर महिला की उम्र 35 से ज्यादा है तो 6 महीने बाद ही सलाह ले लेनी चाहिए। और ध्यान रखिए, फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलने का मतलब सीधे IVF नहीं होता, कई बार सिर्फ दवा से या IUI जैसी छोटी प्रक्रिया से बात बन जाती है। IVF तो सीढ़ी का आखिरी पायदान है, पहला नहीं। और मैं हमेशा ईमानदारी से कहती हूँ, IVF विज्ञान है, जादू नहीं। कोई भी डॉक्टर 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सही जांच, सही इलाज और सही समय, इन तीनों से संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छा। और अब एक जानकारी दे दें कि अगर पैसे की समस्या से आप जूझ रहे हैं और पैसा नहीं है एक साथ, तो अब श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में आप EMI यानी टुकड़ों में पैसा दे सकते हैं, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 24 इंस्टॉलमेंट पर। इसके अलावा इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर कोई जाता है तो पहला कंसल्टेशन फी फ्री, पहला अल्ट्रासाउंड फ्री, रहने की व्यवस्था फ्री, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट जाता है उनके लिए और ढेर सारी सुविधाएं भी। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266। और अब चाहते जाते एक सवाल कि IVF डे के मौके पर हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है जो अभी अभी बीता है?
0: मैं बस इतना कहूंगी, 25 जुलाई हमें याद दिलाता है कि 1978 में जो असंभव लगता था वो आज लाखों घरों की हकीकत है। अगर आप या आपके जानने वाले इस सफर में अकेले महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और आपकी कोई गलती नहीं है। सही जानकारी लीजिए, दोनों की जांच करवाइए और उम्मीद मत छोड़िए। ममता का आंचल हर उस गोद तक पहुंचे जो बरसों से सुनी है, यही मेरी दुआ है।
1: थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें जरूर लिखकर भेजें, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रेडियो पर उसे प्रसारित करेंगे। और आपके साथ साथ जिन लोगों के पास भी वो सवाल है नहीं भेज पा रहे हैं उन तक भी पहुंचाएंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें जरूर इस नंबर पर भेजें 9162562266।

0: 1-800-966-9162-5622-66 ये नंबर है। और एक बात हम कहना चाहते हैं बड़े बुजुर्गों आपसे, हर एपिसोड में कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर आपके घर में कोई भी है जिसके शादी के 2-3-4 साल हो गए, चाहे वो बेटा हो बेटी हो हाँ कोई और है, तो आप उसका मार्गदर्शन करें। और उसके लिए हम धीरे धीरे नंबर बताते हैं कि आप नोट कर लें बड़े बुजुर्ग, 9162-562-266 ये नंबर है। एक बात और कहना चाहते हैं, हमें पता है कि पैसे की समस्या हमारे घर में होती है, बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है जीवन में। उसके लिए हाँ उसके लिए अगर आप अपने पत्नी का इलाज ना करा पाएं, अपना इलाज ना करा पाएं, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। इसीलिए श्रद्धा IVF ने एक समाधान निकाला है, और वो ये है कि अब आप EMI पर भी पैसा चुका सकते हैं। EMI वो भी इंस्टॉलमेंट पर, 1-2 में नहीं, आप पूरे 24 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा चुका सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। और आपको एक बात बताएं और भी, कि अगर इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर जाते हैं आप वहाँ श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में, तो आपको पहला कंसल्टेशन फी कुछ भी नहीं देना होगा। इसके अलावा जो पहला अल्ट्रासाउंड होगा वो भी मुफ्त में होगा। और अगर आप वहाँ से जुड़ते हैं तो आपका जो अटेंडेंट होगा उसके रहने का कोई खर्च नहीं लगेगा। इसके अलावे भी ढेर सारी यहाँ सुविधाएं हम अपने रेडियो वाले साथी को देना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचा सकें, जानकारियां पहुंचा सकें, उसे लाभ दिला सकें और उसके जीवन में खुशी ला सकें। तो अब चलने का वक्त हो गया, चलने से पहले नंबर एक बार फिर 9162-562-266। राजेश और डॉक्टर श्रद्धा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिखना पहाड़ी पटना 4।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं कैमूर जिले की कुछ खास गतिविधियों से। श्रोताओं, लिच्छवी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पिछले 100 दिनों के विकास कार्यों और प्रशासन की जवाबदेही की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर पारदर्शी व्यवस्था मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी है। आने वाले समय में आम लोगों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने की रणनीति पर भी विचार किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब उसका लाभ है समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। इस दौरान बीते 100 दिनों के विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कमी न रहे और भविष्य में इनकी निगरानी और भी प्रभावी तरीके से की जाए। प्रशासन का मानना है कि सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे सामाजिक सुरक्षा, आजीविका, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं तक के लोगों की पहुँच बेहतर होगी और सरकार पर जनता का भरोसा मजबूत होगा। श्रोताओं, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और विद्यार्थियों के में रचनात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से नगर पंचायत कुदरा

की ओर से 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को इसका समापन नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में हुआ। आयोजन नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के परियोजना पदाधिकारी सह अपर निदेशक के निर्देश पर किया गया। शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में नगर पंचायत कुदरा की अध्यक्ष और कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कुल 36 छात्र छात्राओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही 5 विद्यालयों के बीच हुई अंतर विद्यालयीय प्रतियोगिता में अव्वल रहे 12 छात्र छात्राओं को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। इन 12 बच्चों की सूची नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को भेजी जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने बच्चों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चे न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाते हैं बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक होते हैं। वार्ड पार्षदों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कुदरा के कई गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है और बच्चों के माध्यम से इस योजना की जानकारी हर घर तक पहुंचाई जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी उजाली राज ने बताया कि विभाग के निर्देश पर जन जागरूकता के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रोताओं, आज कारगिल दिवस है और हम जानते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद हमारे देश के जवानों ने कई महीनों तक संघर्ष किया और उसके बाद हमारे देश को विजय कारगिल दिवस के रूप में सफलता मिली। श्रोताओं, आइए उन वीर शहीदों को याद करते हैं और सुनते हैं एक बेहतरीन देशभक्ति गीत जिसे हमने लिया है शहीद 23 मार्च 1931 फिल्म से। उदित नारायण, अलका याग्निक और हंसराज की आवाज़ें हैं, शब्द हैं देव कोहली के और संगीत दिया है आनंदराज आनंद ने।

तो श्रोताओं, इसी देशभक्ति गीत के साथ है हमारा आज का संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में थोड़ी देर में शाम के 7:25 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
2: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
1: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
3: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
5: कोई मतदाता ना छूटे।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा,
9: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
8: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
10: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
8: चलो,
7: कहाँ
8: एडमिशन कराने?
10: आता हुआ एक्टिव।
11: आरबीआई कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
12: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
13: और लाइट बिल के
12: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
13: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
12: पक्का।
14: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
15: हर घर सूर्य घर।
16: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत और जन भागीदारी पर दिया जोर। सीतामढ़ी के वेस्ट टू वेल्थ मॉडल की सराहना की। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए मांगे वोट। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कल करेंगे रोड शो। आज करगिल विजय दिवस है। राष्ट्र करगिल युद्ध में शहीद हुए शूरवीरों को कर रहा है नमन। और वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 2 अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में आज अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। श्री मोदी ने करगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को याद करते हुए कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कैच द रेन विशेष अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस अभियान से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्धार को नई गति मिल रही है। श्री मोदी ने इस अभियान में गांवों और शहरों से लेकर पंचायतों और सामाजिक संगठनों तक की जबरदस्त भागीदारी की सराहना की।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का कचरा प्रकृति के लिए नुकसानदेह बना हुआ है। उन्होंने प्लास्टिक के उचित निस्तारण पर बल दिया। श्री मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में कचरे से कंचन का एक उदाहरण दिया, जहां कचरे को दोबारा उपयोग करके सुंदर बेंच बनाए जा रहे हैं।
1: साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का

0: शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में जिस तरह से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना तक और कुथमपल्ली से कक्ष तक इसके कई उदाहरण हैं।
0: साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में खादी की बिक्री 6 गुना बढ़ी है। अब ये बिक्री लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। श्री मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारी मौसम में खादी, हथकरघा या हस्तशिल्प से बना कम से कम एक उत्पाद खरीदने की अपील की।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन होता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को इस वर्ष भी पूरे उत्साह से आगे बढ़ाने का आह्वान किया है।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के माध्यम से देशवासियों का महत्वपूर्ण विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं। श्री नवीन ने पटना के कदम कुआं में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे हम सभी का बेहतर मार्गदर्शन होता है।
2: मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से पिछले बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन को अभियान के रूप में जोड़ा तो देश के लोगों ने उसको अपने साथ जोड़ा और आज फिर हैंडलूम को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में खादी और हैंडलूम निश्चित रूप से भारत की पहचान को और बढ़ाएगा।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी अभिनेता और विधान पार्षद पवन सिंह ने आज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पार्टी प्रत्याशी नीरज

ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद का पहला गीत हमने लिया था कुमार सानू, अलका याग्निक और अजय देवगन की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था दिल वाले। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का यह खूबसूरत गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी रानी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में अभी आपने सुना यह खूबसूरत गीत जिसे हमने लिया था फिल्म प्यासा सावन से। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है फूल और कांटे। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं चौसा गोला बाजार बक्सर से जयराम बिंद, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी प्रधुम्न और प्रीतम कुमार, गढ़मुक्तेश्वर काकाठेर की मड़ैया से राजकुमार जानकी देवी, पुनीत कुमार, सपना कुमारी और भावना कुमारी, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल, बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नजमून होदा से जेम एसएम जावेद और सगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से इन्होंने इस गाने को सुनने की फरमाइश हमसे की है। तो लीजिए, आप सबों की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है फूल और कांटे।

कुमार सानू अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फूल और कांटे फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये मनपसंद कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार वर्षा भोसले और शिवांगी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है लूटमार। इसे लिखा है अमित खन्ना ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान छिपा और पूजा परिहार मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवीद हसन अब्बासी सुहेल हसन अब्बासी अनम यशफ अब्बासी रसीद वारसी किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान सबीहा अंजुमन खान वाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल।

श्रोताओं, इपन पसंद कार्यक्रम में आवाइए सुनते हैं फिल्म कर्मा का यह बेहतरीन गीत। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता।

तो श्रोताओं, कर्मा फिल्म के इसी गीत के साथ गीतों का आज का यह सफ़र अब यहीं संपन्न होता है। गीतों भरा आज का यह सफ़र आपने तय किया अपने रेडियो साथी रवि भूषण को के साथ है। सभी श्रोताओं को रवि भूषण का स्नेहिल नमस्कार। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में एक से बढ़कर एक के गानों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त रवि भूषण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारी स्टूडियो की घड़ी में अब थोड़ी देर में 8:30 होने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं, विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का दूसरा संस्करण।
1: We bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Community, ek community jab koi problem se joojhte hain, ye ho sake ki ek kharab air quality ho, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस। अब इन्वायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ, कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे हैं, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पर एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी एक क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज़ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूँगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है, इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो वी देर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज लाइक यू नो इट्स बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दैट्स द आइडिया दैट वी शुड टेक सम प्रिकॉशन बिफोर वी आर कमिंग अप विद सम एक्टिविटी विच इज इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कमिंग अप विद अ इंडस्ट्री which is taking such and such ground water, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation.

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is our law gives that and gives the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो, उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो, सारे उसका जो local language है, उस पे वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है. और उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी, जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है, उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारा एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीक़ा से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया। उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करता है उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन गए, तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है। तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैनग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था, उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए, उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिस पे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज़ वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ग्राउंड व्हेयर द पब्लिक इज एक्चुअली स्टेइंग और सर्टेनली रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड इन द टॉप डाउन टॉप टायर but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दी, उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी सिक्स मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआर को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: www.jj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का दूसरा संस्करण।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, अब थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस

0: मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
1: आज सुबह चार्ज दिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षा, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न

0: अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और बाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा

0: सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। अब आइए सुनते हैं लोकधारा कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन लोकगीत। पहला लोकगीत का आइए लेते हैं आनंद भरत सिंह भारती और साथियों की आवाज़ों में।

लोकधारा कार्यक्रम का पहला लोकगीत अभी आपने सुना भरत सिंह भारती और साथियों की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं अगला लोकगीत ललन सिंह की आवाज में।

ललन सिंह द्वारा गाए इसी लोकगीत के साथ है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है गजलों का कार्यक्रम महफिल। महफिल कार्यक्रम का पहला गज़ल हमने लिया है हरिहरन की आवाज़ में। एल्बम का नाम है करार।

महफिल कार्यक्रम में अभी आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में यह गज़ल। अगला गज़ल जिसे हमने लिया है एल्बम कशिशे, आवाज़ है अनूप जलोटा की।

यह गज़ल अभी आपने सुना अनूप जलोटा की आवाज़ में। अगला गज़ल गुलाम अली की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है एल्बम परछाइयाँ से।

104 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासूवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्ये गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुड़जा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानस आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानस आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कहिन मधुर तुझसी लागला

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: tabla at the mere age of 6 and later received profound musical guidance from the renowned tabla player.
1: कार्यक्रम आज के फनकार अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए पेश है हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम का पहला एल्बम गाना हमने लिया है सुखजिंदर अल्फाज की आवाज़ में। एल्बम का नाम है देश मेरे। भड़क सिंह ने इस गीत को लिखा है और सुखजिंदर अल्फाज ने इसे संगीत से नवाजा है।

यह देशभक्ति एल्बम गाना अभी आपने सुना सुखजिंदर अल्फाज की आवाज़ में, और हमने इसे लिया था एल्बम देश मेरे से। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है नेहा कक्कर की आवाज़ में, एल्बम का नाम है ओ सजना। जानी ललित सेन ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और ललित सेन ने इसे संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम में अभी आपने नेहा कक्कर की आवाज में सुना यह खूबसूरत एल्बम गाना। एल्बम का नाम था ओ सजना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं अखिलेश कुमार की आवाज में मदमस्त नैना एल्बम का या एल्बम गाना। गीत और संगीत हैं अखिलेश कुमार के।

अब आइए लेते हैं आनंद सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट तराने का कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म में अमानुष से, आवाज किशोर कुमार की है। इसे गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत निर्देशन है श्यामल मित्रा का।

श्रोता रसरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना स्वरा शर्मा की आवाज़ में यह खूबसूरत एल्बम गाना, जिसे हमने लिया था एल्बम शाम से ही दिल से। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म अमानुष का यह खूबसूरत गीत, जिसे लिखा था इंदिवर ने और श्यामल मित्रा ने इसे संगीत से सजाया था। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ों में फिल्म मस्ताना का यह बेहतरीन गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म में मस्ताना का यह बेहतरीन गीत है, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं सुनते हैं फिल्म 20 साल बाद का यह गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, राधा पौंडवाल की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म में 20 साल बाद का यह गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शे साहब ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

तो श्रोता, लता मंगेशकर द्वारा गाए इसी गीत के साथ है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हो चुके हैं।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 पर। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरितमानस, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका।

सांध्यकालीन सभा में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:50 पर आप सुनेंगे विधान मंडल समीक्षा हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के रिकॉर्डिंग का प्रसारण। 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल के मौसम पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 17 जुलाई को आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं भारी वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सती हवाएं तथा झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब थोड़ी देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम।

के दिल्ली केंद्र से ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं।